0: प्यार भी।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simzy before we left London.
4: Simzy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
5: T's and C's apply.
1: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
7: सारी रात Bollywood classics का साथ, सिर्फ Leica Gold पर.

0: ताली ताकत जमी ताकत ताली ताकत जमी ताकत झाला आंबो ताकत जगी ताकत ताजी के नसी ताकत नाकत ताकत जमी ताकत नाकत नाकत जमी ताकत नाकत नाकत जमी ताकत नाकत नाकत जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को कुदारी ता कुदारी के ताकत जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को कुदारी ता कुदारी के जम तारी जग तारी जग नाकत ताकत
1: पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी जाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
2: फिर
0: फुर,
2: फुर,
0: फुर, फुर, फुर। बताओ नहीं बड़ी क्या बात हुई।
3: कह दो
0: कह दो कह दो कह दो

0: रघुकुल रीत चला चती चल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचाना ना जाई
1: जाई जाई
0: बन चले।

0: ये कुरम।
1: अरे अरे भालू आया?
2: नहीं आया।
1: तो फिर सो जाओ।
3: क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: 0208574 8410।
0: 2400 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
5: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
6: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

कोय। मने सुत होवे मन बुद्ध, मने सगल पवन की शुद्ध। मने मोह चोटा ना खाए, मने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मने मार्ग ठाक ना पाए, मने पत्स्यों प्रगट जाए। मने मग ना चले पंथ, मने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश दिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोएं लख होवें लखवीस, लख लख गेड़ा आखियें, एक नाम जगदीश।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए धर्म

0: What a lovely track to start this hour. Dil Deewana Bin Sajna Ke in the vocals of Lata Mangeshkar from the super duper hit movie Maine Pyar Kiya. Achha, ek very interesting cheez or fact about this movie, ya ek interesting baat about this movie was, so when Suraj Barjatia was casting for this movie, of course, Salman Khan ne auditions di thi, but Salman Khan was very skeptical about this movie. Unka, of course, unhone Biwi Ho To Aise के साथ डेब्यू किया था एंड देन दिस वाज गोना बी वन ऑफ हिज मेजर मूवीज एज द लीड बट बिकॉज सूरज बजाटिया एंड यू नो बजाटिया फिल्म्स में हीरो जनरली धोती एंड कुर्ता पहनते हैं सो ही वाज लाइक अरे यार मेरी मूवी में अगर मुझे धोती और कुर्ता पहनाया जाए इन माय फर्स्ट मूवी तो फिर कैसा रहेगा बट देन ऑफकोर्स सूरज बजाटिया ने उनको पूरी स्क्रिप्ट एक्सप्लेन की एंड देन ऑफकोर्स रेस्ट इज हिस्ट्री आई एम वीर इन फॉर द लवली काजल ऑन द ब्रेकफास्ट A show giving you company all the way till 10 a.m. And pyari pyari baatein and music to chalta hi rahega on your favorite radio station like a gold.
1: Bollywood Flashback with Kajol.
0: Well, it's time for the Bollywood Flashback. So, hoga ye that I am going to play a dialogue from a movie and you've got to guess ki wo movie kaun si hai. So, of course, agar aapko kuch hints chahiye hai, then main aapko hints dunga because I'm a very nice guy. To fir, let's go ahead and brace yourself. Alright, so here is the... Here is the dialogue.

0: ये है लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल protected.
2: Visit travelhubworld.com.
3: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
7: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
8: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
11: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
12: This is huge.
11: Fadi Kalal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
12: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
11: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
12: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
11: Fadi Kalal, Rainer's Lane. There is only one.
10: Be part of a historic grand opening.
8: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
10: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
8: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
10: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
13: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
15: Like a Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
16: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: चौदहवीं का चांद हो या फताब, व्हाट अ लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ रफीसा। वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर।
1: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

0: वो है जरा कफा कफा इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब एंड लता मंगेशकर. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: लंदन्स बिगेस्ट क्लासिक्स ऑल डे. लाइक अ गोल्ड.

0: बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं. दिस अ लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ आर आर्टिस्ट ऑफ द वीक हरिहरन. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी खामोशी, सलमान खान एंड मनीषा कोइराला. दिस वाज डायरेक्टेड बाय संजय लीला बंसाली. आई थिंक दिस मूवी वाज सो ब्यूटीफुल एंड दिस वाज शॉट इन गोवा एंड स्पेशली दिस सॉन्ग वॉज शॉट इन अ लाइट हाउस. एंड इफ यू एवर गो टू गोवा, गोवा इज अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि बारिशों में गोवा जाना तो बनता ही है. एक और अच्छी खबर, किशोर कुमार फैंस गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय, इंद्राणी, संजय विद हिनल एंड द 515 बैंड. इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19 जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल Chigwell SX. Tickets available at eventbrite.co.uk or call on 0208-514-5400. Exclusive radio partner Leica Gold Radio.
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जाने मन तुम कमाल करते हो इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड किशोर दा फ्रॉम द मूवी त्रिशूल. वन मोर लवली ट्रैक दिस आवर एंड वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय. रवि जी इज गोना बी नेक्स्ट giving you company and playing some great music.
1: London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network.

0: एंटरटेनमेंट भाई, स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। दिस इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम मनोरंजन एंड द प्रेजेंटर इज रवि शर्मा, आपका जाना पहचाना, आपका दोस्त पुराना। ये पुराना कहते हुए भाई आप हिचकिचाते क्यों हैं शर्मा जी? मान लीजिए आप पुराने हो चुके हैं। अब वो कोई बात जोड़ दीजिए उसके साथ के वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। बुधवार वर्ष 2026 के जून महीने की 17 तारीख और वक्त हमारी आपकी मुलाकात का भाई 10:05 हो चुके हैं ब्रिटिश घड़ियों में। तो साहब जुड़ जाइए लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड के गोल्डन गीतों के साथ, बातों के साथ और हंसी के ठहाकों के साथ अब से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक। शुरुआत किस चीज से करें, शायरी से करें? आज किसी की डायरी मिली नहीं, हाथ लग जाती तो शायरी से करते। लेकिन साहब आज शुरुआत करते हैं आंकड़ों से, गिनती से, और गिनती किस चीज की शर्मा जी? उम्र की करते हैं।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Leica Gold. London का number one Asian retro music station.
0: तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, दोनों मिलाकर के हम बनते हैं 33 के। बड़ी बढ़िया उम्र है, बस इसको आगे मत सरकने देना। 16 की, मैं 17 का।

0: तुमने किसी से कभी प्यार किया है? बड़ा अजीब सवाल है भाई। किसी ने किया भी होगा तो कहते हैं किया थोड़ी जाता है प्यार, प्यार तो हो जाता है, होता होता कुछ नहीं है भाई, सब करते हैं मानते नहीं है। अपने आप हो गया, लो अपने आप होता है कभी? आपने भोजन किया, कहते मैंने खाया नहीं, बस अपने आप खाया गया। सब काम किए जाते हैं, करते हो पर स्वीकार नहीं करना चाहते। कई लोग तो बड़ी भारी बड़ी बड़ी गलतियां करके कहते हैं मुझसे हो गई, और साहब इतने गंभीर अपराध करके अदालत में खड़े होके कहते हैं मुझ पे शैतान सवार हो गया था। यानी शैतान, उसको फांसी दो, उसको सजा दो, उसको कैद करो, मैं तो मासूम हूं, मैं तो इनोसेंट हूं। देखिए साहब, सच्ची बताऊं वैसे, अगर आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, मैं तो शरीफ आदमी हूं, किसी से पूछ लो। मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपनी पॉकेट में रखता हूं, जहां कोई कुछ मतलब अक्सर लड़कियां इल्जाम लगाती हैं, कोई कुछ कहे तो मैं फौरन सर्टिफिकेट निकाल के दिखा देता हूं। और भाई साहब, शराफत की क्या गारंटी दूं, अच्छे कैरेक्टर की वजह से ही मुझे जेल से 6 महीने पहले रिहाई मिल गई थी। बोले अच्छा चाल चलन है। ये हमारे दोस्त में एक जमाना था भाइयों के, हम लोग ना एक अपना ग्रुप बना रखा था, एंटरटेन करते थे, तो जेल में हम प्रोग्राम करने जाया करते थे, और जेल में बड़े गंभीर अपराधियों से मुलाकात होती, बात होती थी। शो करने से पहले वो आके ऑडियंस में बैठते थे, उनको सबको लाया जाता था। और उन दिनों भाई वो जेलर और जो जेल सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, वो मित्र बन गए थे, दोस्त बन गए थे हमारे, अक्सर हमें प्रोग्राम मिल जाया करते थे। तो साहब उन दिनों कुछ कैदियों को नज़दीक से जानने देखने सुनने का मौका मिला था। अनुभव है साहब, इकट्ठे कर रखे हैं, बांटते चलेंगे आपके साथ, लेकिन फिलहाल तो लेट्स सी हाउ मच मनी वी कैन गेट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK फॉर 1 pound।
1: SBI UK मनी टॉक, सेंड मनी टू इंडिया विद कॉम्पिटिटिव रेट्स विद योनो SBI UK ऑनलाइन एंड वाया द SBI UK ब्रांच।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK आज का रेट बता रहे हैं, 1 pound के बदले वो दे रहे हैं 126.35 इंडियन रुपीज, 126.35 रुपये का रेट चल रहा है। लेकिन इतना ही नहीं भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि जून के महीने में एक खास ऑफर, वो कहते हैं सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन ए 75 pounds वाउचर एवरी डे वेन यू सेंड ओवर 1000 pounds, ये ध्यान रखिएगा, और 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: ये है लाइक अ गोल्ड
3: Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Football, फुफा जी, नहीं फीफा, फीफा भाई। फुटबॉल में क्या बताएं साहब, कल के मैचेस में तो कहते हैं ज़्यादातर ड्रॉ हुए। मैच में जो ड्रॉ होना ना, ये बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे भाई हम पैसे खर्चे टिकट ले, देखें भाग दौड़ तो होती है लेकिन कोई नतीजा ना निकले, थोड़ी सी निराशा होती है। पर भाई कल ऐसा ही हुआ। आज बता दें मुकाबले जो हो रहे हैं, अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया, और भाई ऑस्ट्रिया वर्सेस जॉर्डन, और पुर्तगाल वर्सेस कोंगो, और इंग्लैंड वर्सेस क्रोशिया, ये सारे मैच जो हैं होने वाले हैं। और साहब जो भी नतीजे आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे, सुनते रहिएगा लाइक का रेडियो नेटवर्क। इसके साथ ही भाई जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनकी ओर से भी ये ऑफर है कि आप यू कैन गेट योर 15 minutes फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका। ये नाम याद रखिएगा, फायदेमंद नाम है लाइका, मेंशन लाइका एंड गेट 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस फ्रॉम रैक लॉ।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स, कॉल 0203 345 2000 और विजिट raklaw.co.uk। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: नीड एनीथिंग फ्रॉम टेस्को?
3: Celebrate every kind of dad with Toblerone milk chocolate. Now just £3.50, down from £7.
4: Club card accepted.
3: Because every little helps. Majority of larger stores, 340 grams, ends 21st of June. Club card or app required.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: Night in London.
1: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे थे भाई ये गीत फिल्म नाइट इन लंदन से। उस दौर में बहुत सारी फिल्में विदेशों में बनती थी और लोग सिनेमा हॉल में बैठ करके ही विदेश यात्रा किया करते थे भाई सीन्स के माध्यम से। तो अब ये गीत हमें ले आया है इस मोड पर जहां आज के दिन के साथ जुड़ने वाले समाचारों पर हमें नज़र डालनी है। एकदम यहाँ प्रधानमंत्री जो है वो बर्नहम को एक बिग रोल गवर्नमेंट में ऑफर कर रहे हैं, ये अभी अभी खबर आ रही है, लेकिन क्या रोल है वो उसकी व्याख्या अभी नहीं हुई है। और साहब वर्ल्ड कप मैच में इंग्लैंड तैयार है, आज मुकाबले में उतरेगी टीम, तो हम जोड़े रखेंगे आपको स्कोर से। इसके अलावा भाई खेलों की खबरें खूब सारी हैं और क्या क्या है आज के प्रमुख समाचारों में, लेट्स फाइंड आउट। अरे उससे पहले एक और बात बतानी भाई, खबरें बता दें लेकिन उससे पहले एक कंपटीशन है प्रोग्राम में, वही कल भी किया था हमने। अरे वो भाई है ना कि एक फिल्म जो है वो दिखाई जा रही है और लाइका रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप विद एक्सक्लूसिवली धर्मा प्रोडक्शंस के साथ। गुजराती फिल्म है जिंदगी वंस मोर, जिंदगी जिंदगी नहीं ये गुजराती प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, जिंदगी वंस मोर स्टारिंग सिद्धार्थ रंडेरिया विच रिलीजेज एट सिनेमाज दिस वीकेंड। लेकिन भाई हमारे पास हैं दो टिकट देने के लिए, ऑफर करने के लिए इस प्रोग्राम में। और भाई वो शो जो हो रहा है जिसमें आप जाएंगे देखने के लिए ये दो टिकट्स जीतकर, ये स्पेशल शो है सिर्फ इन्वाइटीज़ के लिए, आमंत्रित लोगों के लिए, ख़ास ख़ास लोगों के लिए। स्क्रीनिंग हो रही है कहाँ पर, कोर्ट हाउस होटल में, होटल का अपना सिनेमा हॉल है होटल के अंदर, बड़ा बढ़िया। तो आप बड़ी प्राइवेट स्क्रीनिंग सी महसूस करेंगे, ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के नज़दीक है और बहुत सारी फिल्मों के प्रीमियर वहाँ हमने अटेंड किए हैं, बहुत सारी फिल्में देखी हैं, सितारों से भी मुलाकात हुई है वहाँ। बस स्क्रीनिंग टेक्स प्लेस दिस थर्सडे 18 जून शाम 6 बजे, और इसमें आप अगर आप जाना चाहते हैं तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। हमारा कंपटीशन नंबर जिसमें आप भाई एंट्री कर सकते हैं 07424232323। बताने की ज़रूरत है क्या, आप तो रट चुके हैं ना ये नंबर। आप 07424232323 पर आप जवाब दे सकते हैं। सवाल क्या है, कुछ भी नहीं है, जवाब ही देना है खाली। जवाब ये है कि आपको जिंदगी लिखना है, JINDAGI, हाँ जिंदगी। तो साहब ये शब्द आपको लिखना है और फिर अपना नाम और फ़ोन नंबर लिख करके हमारी कंपटीशन लाइन पर भेजना है। इसी प्रोग्राम में मैं नतीजा बताऊंगा, दो टिकट्स किसको जाएंगे। और कल शायद नुसरत जी ने जीते थे दो टिकट्स, उन्होंने भाई फूल भेजे, फूल, अरे यार वो फूल बनाने वाले फूल, मतलब असली फूल नहीं, वही जो फूलों की पिक्चर भेजी, थैंक यू नुसरत। आजकल लोग चाय के कप भेजते हैं, पकौड़े भेजते हैं, मिठाई भेजते हैं, सब के सब चित्र में वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, ऊपर वाला देखेगा आपको ना, तरसा तरसा करके दिखाना जरूरी है क्या। थैंक यू नुसरत, जरूर जाना आप फिल्म देखने के लिए। और आज देखते हैं कौन जीतता भाई, 07424232323 कॉम्पिटिशन की लाइन ओपन है, भेजना शुरू कीजिए एंट्रीज। जिंदगी लिखना, नाम और फोन नंबर लिखना है, दैट्स इट।
1: मनोरंजन विथ रवि शर्मा,
0: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। आज के प्रमुख समाचारों में भाई पहले तो खेलों से ही शुरू हो रही हैं खबरें। संजय मांजरेकर ये क्रिकेट के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं और भाई कमेंटेटर भी होते हैं, एक्सपर्ट भी हैं क्रिकेट के, कहते हैं अगर मैं कोच होता तो वैभव को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम में शामिल नहीं करता। भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे इंटरनेशनल चल रहा है भाई इस समय मैच, और वैभव उसमें खेल रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी उम्र के इस खिलाड़ी को बहुत कवरेज मिल रही है भाई, वो बड़े बड़े काम भी कर रहा है। लेकिन भारत के फॉर्मर क्रिकेटर और संजय मांजरेकर ने एक पोस्ट में कहा है कि इंडिया ए के कोच या वो मैनेजर होते तो अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे मैच के लिए वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं करते। ये भाई ए टीमें खेल रही हैं, वो पूरी मैंस टीम नहीं। इसके अलावा और खबरें, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल केवल गलत काम के लिए नहीं होता है। क्यों पाबंदी लगाई जा रही है भारत में इस पार्टी पर? टेलीग्राम पर टेम्परेरी प्रतिबंध लगाने के सरकारी फैसले का कॉकरोच पार्टी ने विरोध किया है। कॉकरोच जनता पार्टी ये बनी है भाई पार्टी और बड़ी चर्चित है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से पहले केजरीवाल ने की है ये अपील। दोनों की मुलाकात होने वाली है भाई आज ही। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम को मीटिंग होनी है। और इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी से अपील की है कि बात कीजिए, सीना तान के छाती ठोक करके बात कीजिए, ट्रंप को बता दीजिए। उन्होंने ट्रंप ने मिसाइल दाग करके हमारे 3 जो सिटीजन्स को मार डाला, उनको भारत के 140 करोड़ लोगों का स्पष्ट संदेश दीजिए कि भारत के लोग बहुत गुस्से में हैं इस बात से। आपको बता दें भाई, 3 भारतीय नाविक या नेवल जो पावर है भारत की, वेल भारत के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे नेवी के रिटायर्ड लोग या नेवी से जुड़े लोग जो है सेना से रिटायर्ड होके मर्चेंट नेवी में या दूसरे देशों के जहाज़ों में काम करते हैं, उनमें से 3 लोग थे जो मारे गए हैं वहाँ। तो उन 3 के लिए भारत के लोग बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि भारतीय नागरिक तो हैं वो, चाहे वो किसी भी देश के लिए या किसी भी शिप पर काम कर रहे हों। ओमान की खाड़ी में MT सेटेबोला शिप पर हुए हमले में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया की डेड बॉडीज भारत पहुंच गई हैं। मस्कट में भारतीय एम्बेसी ने यह जानकारी दी है। करीब 1 सप्ताह पहले ओमान की खाड़ी में MT सेटेबोला शिप पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नेवल लोगों की जो मौत हुई थी। इस जहाज पर 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 21 को बचा लिया गया था। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया है। ये भाई शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में एक खबर जो है चर्चित है कि वहाँ चढ़ावे में यानी पैसे जो लोग मत्था टेक करके चढ़ाते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी की खबरें फैल रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। श्रद्धालुओं के पैसे भी आप चुरा लें, श्रद्धालु आते हैं उनका भी चढ़ावा अपनी जेब में भर लें, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? आपको बता दें भाई, ये बात अभी कथित तौर पर है, कोई कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद इस मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में चंदा विवाद की जाँच के लिए 3 मेंबरों की एक SIT का गठन कर दिया है जो जाँच करेगी। फुटबॉल कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप जे के एक मुकाबले में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ लगातार 3 गोल दाग दिए भाई। हैट्रिक, वर्ल्ड कप में मेसी की ये पहली हैट्रिक है। इसके साथ ही मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मेसी ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप में 16 गोल किए हैं। उन्होंने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजा की बराबरी कर ली है। वर्ल्ड कप में गोल करने के लिहाज से मेसी ने ब्राजील के रोनाल्डो, जिन्होंने 15 गोल कर रखे, उन्हें पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि अर्जेंटीना ने 2022 का फुटबॉल विश्व कप जीता था। मेसी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया है। अमेरिकी युद्ध विभाग ने US इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदल दिया है। अब इसका जो ऑथेंटिक नाम है वो US पैसिफिक कमांड कर दिया गया है, यानी अब हिंद प्रशांत कमांड से हिंद शब्द हटा दिया गया है और इसका पुराना नाम वापस बहाल कर दिया गया है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD Vance ने ईरान के साथ शुरुआती समझौते के प्रावधानों के बारे में कहा है कि अगर ईरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था में यानी वर्ल्ड की माली जो व्यवस्था है उसमें उसकी वापसी का रास्ता खोलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ओबामा के दौर में ईरान के साथ हुई डील बुरी तरह नाकाम रही थी और अब ये समझौता उस डील से बिल्कुल विपरीत है, इससे ईरान को फायदा होगा जैसे ही ये समझौता लागू होता है। G7 फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी ने कई नेताओं से मुलाकात की है। भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और भाई इस दौरान ब्रिटेन, कनाडा, कीनिया, मिस्र, जापान और UAE समेत कई देशों के नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: Laika Gold, tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
0: लौट आइए संगीत की ओर। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से एक और संदेश है भाई, वी हैव टीम्ड अप विद तारिक हलाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच। और ये कब? आज ही तो खुल रही है। यस, लोकेटेड एट 297 रेनर्स लेन फिनर। और वहाँ से भाई हमारे जो है साथी प्रेजेंटर्स कॉन्टैक्ट भी करेंगे, जानकारी देंगे। द फर्स्ट 100 कस्टमर्स विल हैव द चांस टू क्लेम अ गोल्डन टिकेट ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस देयर। और वो कहते हैं कि स्पेंड £1 एंड रिसीव £50 वर्थ ऑफ फूड आइटम्स। टीएनसी अप्लाई।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के इस मोड पर, जहां भाई हम चिंतन से आपका स्वागत करते हैं। और चिंतन में आज हम भाई किसी से आपकी भेंट करवाना चाहते हैं। चिंतन में

0: आपकी लाइन जोड़कर हम सोचते थे कि हमें कुछ आध्यात्मिक विचार चिंतन में शामिल करने के लिए मिलेगा। इट्स ऑल राइट, गुरुजी से फिर बात कर लेंगे जब वो उपलब्ध होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग पारस।
1: 11:30 to 12:30,
0: हैव ए नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू। तो भैरव भाइयों, आप समझ गए होंगे ये रेडियो की जिंदगी जो है ना, समय के साथ बंधी होती है। एग्जैक्ट टाइम पर हमें समाचार लेने होते हैं, एग्जैक्ट टाइम पे प्रोग्राम शुरू करके खत्म करना होता है। तो ऐसे में ये निश्चित था, आज एक महान विभूति से आपकी हम भेंट कराना चाहते थे, हिज होलीनेस श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। भाई ये हिमालयन योगी हैं और मेडिटेशन के विषय में आज कुछ जानकारी देना चाहते थे, लेकिन इस वक्त वो उपलब्ध नहीं है। पर हमारे पास तो चिंतन बहुत सारे हैं, आइए आपके साथ एक चिंतन साझा करते हैं। ये भाई कुछ किताबों से जुटाए हुए और कुछ संतों के मुखारविंद से सुने हुए। कल हमारी भाई भेंट हुई कुछ संतों से, संत त्रिलोचन दास जी महाराज, उनसे मुलाकात हुई और एक सौम यज्ञ चल रहा भाई, वहाँ बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं भारत से और वो यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ किस लिए? मन की शांति के लिए। सोम का एक अर्थ भाई चंद्रमा होता है, लेकिन एक शीतलता भी होता है, शांत। आज जो हमारे चारों तरफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंग्जाइटी और भाई स्ट्रेस, इस तरह की जो परेशानियां है ना, उनके लिए जो सोम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, कितने लोग जुड़े हैं वहाँ का आयोजन देख करके भाई एक एक व्यक्ति के प्रति हमारा मन श्रद्धा से भर गया। और ये सारी कृपा हुई संत शिरोमणि त्रिलोचन दास जी महाराज की कृपा से। तो साहब वहाँ गए, वहाँ देखा और महसूस किया कि एक आध्यात्मिक स्थल जो है, ये जो स्वामी नारायण मंदिर है वुडलेन में, वो इतना शानदार डेवलप हुआ है एक तीर्थ स्थान के रूप में कि वहाँ जाकर के ही मन को शांति मिलती है। फिर यज्ञ चल रहा हो तो क्या कहना भाई। संतों से और शास्त्रों से जो बात मिली, जिसको निचोड़ कह सकते हैं, हम चिंतन में शामिल कर सकते हैं आज। भाई पहले तो धन्यवाद दे जय पटेल, एक कोच ड्राइवर अपनी कोच लेकर के भाई कहीं पार्क करके खड़े थे, उनसे हमने रास्ता पूछा तो कहते हैं जी मंदिर जाना है, तो कहते हैं बैठिए। अब भाई तीन चार लोगों को लेकर के और उन्होंने अपनी कोच मंदिर की ओर घुमा दिया, छोड़ के आए हैं। हमने कहा ये असर कैसे कि आप किसी आध्यात्मिक स्थल के आसपास भी होंगे ना, आपके मन पर असर पड़ेगा उसका। और साहब अगर आप किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाएं, अगर आप किसी को मुस्कुराहट देने के लिए, हंसी खुशी देने के लिए तैयार हो जाएं, तो आपका मन पहले खुश होता है। गुरुजी कहा करते थे चार वेद छह शास्त्रों में बात मिली है दो, चार वेद छह शास्त्रों में बात मिली है दो, दुख देने दुख होत है और सुख देने सुख हो। निचोड़, आप अगर दूसरों को दुख देंगे तो आपकी जिंदगी दुखों से भरी रहेगी, और एक बार आप खुशियां देना शुरू करेंगे, सुख देना शुरू करेंगे, तो साहब आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो जाएगी।

कल हर व्यक्ति वहां पर भाई स्वामीनारायण मंदिर में सोम यज्ञ के मध्य में संतों वाला बाना पहने हुए थे, संत स्वरूप। ऐसा लगता था कि हर व्यक्ति का मन भी और तन भी संतों की वेशभूषा में रंगा गया है।

0: जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मिले राह में जो कोई दीन दुखिया, तो मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। आज का चिंतन, आज का विचार।
1: चिंतन चिंतन,
0: आज के चिंतन के लिए प्रेरणा भाई, कल जो विजिट की हमने थोड़ी देर के लिए स्वामी नारायण मंदिर वुडलेन स्टैनमोर में, वहाँ जो महान यज्ञ चल रहा है और वहाँ हमारे हरिदास जी और उनके साथियों के साथ संत त्रिलोचन दास जी महाराज और वहाँ के आयोजकों से मिलकर एक एक व्यक्ति संत स्वरूप था, लेकिन भारत से आए परम पूज्य परम आदरणीय महाराज श्री गोकुलोत्सव जी और उनके साथ दूसरे संत आए थे भाई, सबका सानिध्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, प्रसाद लिया, तो वहीं से जो प्रेरणा मिली। और आयोजक एक से बढ़ के एक, कृष्णा पुजारा हो या राजू भाई हो या जगदीश जी भाई, सब के सब बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकार करें हमारी ओर से। लाइका रेडियो नेटवर्क पर हम आपके आभारी हैं।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. इस समय का रेट बता रहे हैं हम, नोट कीजिए। एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 126.35 रुपीस, 126 रुपए और 35 जो है पैसे का रेट चल रहा है भारतीय मुद्रा में। तो साहब इस तरह से सिर्फ यही नहीं, कुछ स्पेशल ऑफर भी चल रही है जून महीने के दौरान, और वो है कि अगर आप भारत पैसा भेजते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योनो ऐप के माध्यम से या उनकी ब्रांच में जा करके, तो साहब 75 पाउंड्स वाउचर जीतने का चांस है इफ़ यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स। इसके अलावा अगर 2000 पाउंड या उससे ज़्यादा की रकम भेजते हैं तो देर इज़ अ चांस टू विन 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक। TNC अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: ये है Leica Gold.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: और साहब रैक लॉ द्वारा स्पॉन्सर्स फुटबॉल फीफा के मैचेस की विषय में जानकारी दें भाई। कल एक घटना घटी है कि वो मेसी ने हैट्रिक स्कोर की है और भाई उनकी बड़ी चर्चा है, लेकिन कल के जो रिजल्ट्स हैं उनमें अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया और 3 गोल मेसी ने करके जो है भाई सबसे अधिक गोल करने का वर्ल्ड कप में जो है रिकॉर्ड की बराबरी की है। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को हराया 3-1 से, और आज के जो मैच हैं उनकी बारे में भी जानकारी और स्कोर के आंकड़े हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क के साथ। साथ में ये भी बता दें भाई कि हमारे जो स्पॉन्सर हैं रैकलो वाले, वो कहते हैं कि अगर आप लाइका शब्द मेंशन करके, लाइका का नाम लेकर के हमें फ़ोन करते हो तो 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस के अधिकारी हैं आप। यू कैन गेट फ्री लीगल एडवाइस फॉर 15 मिनट्स फ्रॉम रैकलो इफ़ यू मेंशन लाइका।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: ये है
1: Like a Gold,
3: Like a Gold।

0: गीत संगीत की महफिल तो सजी रहती है साहब, लेकिन चिंतन में हम आध्यात्मिक विचार लेकर आते हैं भानु भाई, और कभी कभी हम किसी ऐसी विभूति से आपकी भेंट करवाते हैं कि भाई वो आशीर्वाद और प्रसाद रूप में कोई संदेश दे जाते हैं। आज हमने कोशिश की थी 11 बजे उन्हें मिलवाने की, तो उस समय वो उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन अब यूँ समझिए जैसे गंगा स्वयं चल करके भाई पुण्य देने के लिए और पवित्र बनाने के लिए धरती पर उतरी थी, ऐसे ही संत महात्माओं का आगमन होता है ब्रिटेन में और हमारे रेडियो के माध्यम से हम उनके संदेश आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं हिज होलीनेस श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, और ये हिमालयन योगी हैं, मेडिटेशन समर्पण मेडिटेशन के संस्थापक हैं, और भाई इनका जो काम है, जो मुकाम है, जो स्थान है इनका अध्यात्म में वो बहुत ऊंचा है। लेट्स फाइंड आउट इफ वी कैन गेट ब्लेसिंग्स एंड प्रसाद फ्रॉम हिम। परमादरणीय स्वामी जी प्रणाम करता हूँ।
1: नमस्कार नमस्कार
0: स्वामी जी। मेरे पास ये मैसेज है कि आप ये जो हिमालयन समर्पण मेडिटेशन है वहाँ से आपने अनुभव अर्जित किया है, तो ये क्या प्रकृति से प्राप्त हुआ मेडिटेशन का जो ज्ञान है अनुभव है, या कोई किसी व्यक्ति विशेष से आपकी भेंट हुई हिमालय में कंदराओं में पर्वतों पर?
1: नहीं, वास्तव में क्या रहता है, जैसे आपकी स्थिति बनती है ना, जैसे आपके जीवन में गुरु का आगमन होता है।
0: जी
1: वैसे मैं कलकत्ते में मार्केटिंग मैनेजर था
0: जी,
1: उसके बाद में एमकॉम तक पढ़ा हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा लगता था एमकॉम करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है।
0: हाँ,
1: तो नौकरी करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैंने ना एक बेचैनी सी लगती थी। उसके बाद में कलकत्ते में नदी के किनारे बैठता था तो नदी का पानी देख करके ऐसा विचार करता था कि नदी का पानी कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर के समुद्र में विलीन होगा, तब इसका अस्तित्व नदी नहीं रहेगा समुद्र होगा। वैसे मेरे जीवन में भी कब परमात्मा मय होगा कि मेरा अस्तित्व शरीर नहीं रहेगा, ये इच्छा करता था, तब जाके मेरे जीवन में गुरु आए।
0: गुरु का प्राप्त होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो गुरु का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान प्राप्त होना। तो स्वामी जी जो आपके पास धन है, जो संपदा है, ये समर्पण मेडिटेशन के माध्यम से आप लोगों में बांट रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आपके फॉलोअर्स हैं, तो थोड़ा सा प्रसाद हमें हमारे श्रोताओं को दे दीजिए, बता दीजिए क्या है समर्पण मेडिटेशन, और ये मेडिटेशन से आप अभिप्राय क्या है, ध्यान समाधि, थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए संक्षिप्त से समय में।
1: नहीं, पहली बात तो ना, सब अध्यात्म का एक ही सार है, सब अध्यात्म का एक ही उद्देश्य है, आपका शरीर भाव कम हो जाए और आपका आत्मभाव वृद्धिगत हो जाए, बस
0: जी,
1: वही
0: जी।
1: तो मेडिटेशन में वही होता है, आपका शरीर भाव कम हो जाता है, आपका आत्मभाव बढ़ जाता है, और दूसरा मनुष्य जीवन की जितनी भी समस्या है, मनुष्य जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब शरीर से संबंधित है, जब आपका शरीर भाव कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली समस्या भी कम हो जाती है, ऐसा अनुभव मेरे को नहीं लाखों साधकों का है।
0: जी जी, तो आप उसको कैसे बांटते हैं आम लोगों से, क्योंकि दुनिया में तो आप देखिए कि ये शायद मेडिटेशन की कमी है, भीतर झांकने की ही कमजोरी है कि बाहर युद्ध चल रहे हैं, चारों तरफ जंग का माहौल है, विवाद हैं, झगड़े हैं, लड़ाई है, बैर विरोध है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, चिंताएं हैं, फिक्र हैं, तो स्वामी जी इसका कैसे इसका जो है हल ढूंढा जाए, बताया जाए।
1: ये बताओ ऐसा समय कब नहीं था, आप पीछे भी देखो ना, पीछे भी कभी भी ऐसा समय नहीं है कि एकदम शांतिपूर्ण विश्व है, कभी भी नहीं है। एक बार ना मैं कनाडा जाने को निकला था,
0: तो
1: मुंबई के एयरपोर्ट पे एक पुलिस ऑफिसर खूब दौड़ते दौड़ते दौड़ते हाँपते हाँपते आया, मेरे को बोलता स्वामी जी आप क्या बोलते हो, निर्विचार रहो निर्विचार रहो, कितना आतंकवाद फैल रहा है, कितने बम फूट रहे हैं, कितने विस्फोट हो रहे हैं, और आप बोलते हो निर्विचार रहो निर्विचार रहो, कैसे रहे। मैंने उसको बोला देख मेरा चित्त इधर है, तो मेरे को दिख रहा है कि मैं 30 साल पहले हिमालय से आया, आज 72 कंट्रीज तक पहुंच चुका हूँ, ये मेरे को दिख रहा है, और हजारों लाखों लोग ध्यान सीख रहे हैं, ये मेरे को दिख रहा है, तेरे को ये दिख रहा है कि बम फूट रहे विस्फोट हो रहे। तो जीवन में कभी भी प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक क्षण जब जब अच्छी घटना घटती है तब तक बुरी घटना घटती है, प्रश्न तुम्हारा चित्त कहाँ पे, तुम्हारा चित्त अगर अच्छी जगह तुम अच्छा ग्रहण करोगे, बुरी जगह बुरा ग्रहण करोगे, तो कहने का अर्थ अगर ध्यान करते हैं ना तो हमको हमारा चित्त अच्छा हो जाता है, और उसके बाद में हमारा चित्त बुरी जगह जाता ही नहीं, तो ये सब हो रहा है, हमारा कोई चित्त उसके अंदर नहीं, हम तो मजे में शिविर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, चल ही रहे।
0: क्या बात है क्या बात है। तो स्वामी जी यहाँ कोई आपका शिविर लंदन में लग रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, हम लोगों से कहेंगे कि वो वहाँ जा करके ये प्रसाद और आशीर्वाद ग्रहण करें।
1: नहीं, अभी मेरा ऑक्सफोर्ड में हो रहा है 18 तारीख को, लेकिन पता नहीं वो बाहर के लोगों को अलाउ कर दे कि नहीं।
0: अच्छा,
1: में उसके बाद में आयरलैंड जा रहा हूँ। आयरलैंड में 24 तारीख को संसद में शिविर, वहाँ पे बड़े शिविर से 24 तारीख को भी है, काफी आयरलैंड में बहुत है।
0: शिविर से मतलब अभिप्राय कैंप लगा रहे हैं। तो बहन भाइयों, आप सुन रहे हैं स्वामी जी जो महाराज श्री के पास समय भी सीमित होता है और हमारे रेडियो पर भी कार्यक्रम में हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, लेकिन इनसे संपर्क किया जाए, इनके कैंप अटेंड किए जाएं तो बहुत लाभ हो सकता है। महाराज श्री कोई संपर्क सूत्र, कोई फोन नंबर या कोई ठिकाना कहीं जहां आपसे संपर्क किया जा सके?
1: वो सब मैं आपको भेजता हूँ।
0: ओके, ठीक है, तो मैं अनाउंस कर दूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं, बहन भाइयों, हिज हॉलीनेस श्री शिव कृपानंद स्वामी जी हिमालयन योगी हैं और ये संस्थापक हैं समर्पण मेडिटेशन के, और मेडिटेशन के माध्यम से कितने ही कष्ट, कितने ही दुख, परेशानियां, चिंताएं, फिक्र जो है उनको मिटाने का जो मार्ग दर्शन देते हैं। तो हम सभी श्रोताओं की ओर से महाराज जी आपका धन्यवाद करूँ। इससे पहले कोई एक संदेश संक्षिप्त रूप में आप सब श्रोताओं को देना चाहें?
1: पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है।
0: ओ जी, जी।
1: देखिए, मैंने जैन मुनियों का एक शिविर लिया।
0: हाँ।
1: वो शिविर खत्म हुआ 8 दिन बाद, तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी ध्यान की 3 पद्धतियां हैं।
0: हाँ।
1: एक पद्धति है कि सांस के ऊपर चित्त रख के ध्यान करो, आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया। दूसरी पद्धति है त्राटक, आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया। तीसरी पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम, आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया। आपने तो कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन हम 8 दिन रहे, 8 दिन में हमको जो अनुभूति हुई वो अनुभूति हम दूसरे को बांट नहीं सकते। तो उनको मैंने बोला, महाराज साहब पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है। पद्धति में एक शरीर को सिखा सकता है, एक शरीर एक शरीर से सीख सकता है। ये ध्यान का संस्कार है, वो ध्यान का संस्कार हिमालय के गुरु ने मुझे दिया और देकर के अधिकृत किया। अधिकृत जब अपन हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली फिर अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, अपने माध्यम से सब कार्य हो जाता है। वैसे भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा, मेरे माध्यम से हो गया, तो मेरे माध्यम से उन जैन मुनियों को भी मिला। तो कहने का मतलब, मैं कुछ करता नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे सानिध्य में ही उनको वो अनुभूति हो जाती।
0: क्या बात है,
1: हम बोलते हैं कि ये जो शरीर भाव है ना, ये आपका 45 दिन आप कम करो तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन के सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, क्योंकि सब प्रॉब्लम संबंधित है आपके शरीर से।
0: क्या बात है भाई, बता दूं बहनों भाइयों, ये आध्यात्मिक संदेश जो है ये बहुत थोड़े समय में समझने में थोड़ा सा वो होता है, इस पर विचार करना, और ये अपने आप अनुभव होता है, एहसास होता है आपको। आप शरीर भाव से मुक्त होकर के और आत्म भाव में जब स्थित होते हैं, ये स्वामी जी बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे ज़रूर। मैं एक बार सबकी ओर से, श्रोताओं की ओर से, लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपके श्री चरणों में, और अब अनुमति चाहता हूँ, आई विश के आप जो संपर्क सूत्र भेजेंगे मैं साझा कर सकूंगा लोगों के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और साहब, ऐसी आध्यात्मिक भाषा, आध्यात्मिक संदेश, स्पिरिचुअल अनुभूति होती है भाई। ये मेडिटेशन जो है शरीर से शरीर को नहीं सिखाई जा सकती, ये तो भाई अनुभूति होती है, सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप अपने भीतर उतरेंगे, शरीर भाव को समाप्त करके, मैं शरीर हूँ इसे हटा के, भाई बड़ा मुश्किल, मैं बताना चाहूँ कैसे बताऊँ, जो इतनी महान विभूति आकर के थोड़े से शब्दों में अपनी बात कह गए, आप इस पर विचार करना। शरीर भाव को समाप्त करके, मैं रवि शर्मा नहीं, मैं उस परम पिता परमात्मा का अंश हूँ, उससे हट करके शरीर से जब मैं सोचूंगा तब मेडिटेशन होगी। लौट आइए संगीत की दुनिया में, एंजॉय कीजिए ये।

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: करेंसी रेट्स नोट कीजिए भाई, एक पाउंड के बदले LemFi वाले दे रहे हैं भारतीय मुद्रा में, इंडियन करेंसी में 126.77 रुपीस, पाकिस्तानी 373.27, श्रीलंकन रुपए 447.72, बांग्लादेशी टके 164.73 एंड अफगानी 84.69.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The gold is sold at the rate of 103.95 pounds per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
2: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
4: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
8: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala. Bala style.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
12: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
11: Exclusive radio partner, Leica રેડિયો
13: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે
2: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર
13: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ
2: ફ્રાન્સ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ઇટલી અને જર્મની સાથે
13: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ
2: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે
13: કોલ 020-8900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ
2: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન
14: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
15: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
14: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
16: गड़बड़ घोटाला छे प्रॉब्लम्स मोटा छे पर बधु ऑलराइट छे
17: मेचने बैक टू बैक त्रण मूवीज जोई लीधी
16: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी कियोस विथ वीरज गिलानी एंड उमंग व्यास इन The movie Badhu Alright Che.
17: Better kalak mal pachu aavi jaise ne pachi Badhu Alright thai jaise.
16: In cinemas on 12th of June. For more info, visit Bakrania Media's Instagram handle.
18: Evu lage che ke picture chalche.
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
11: on Leica Radio Network

0: सरिता, मोनिका, सरिता किसको बुला रहे हैं आप? हेलो,
1: बुला दी। हाय रवि जी। रवि जी मैं हूँ यहाँ तारिक हलाल मीट की। आज नई ब्रांच खुली है रेनर्स लेन में, तो हम सब यही थे। बाली जी, आन बाली जी के साथ साथ रूबी, रजा, कैम सभी यहाँ पर हैं। अभी अभी बाली जी गए हैं क्योंकि उन्होंने 1 बजे शो करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत से लोग यहाँ आए, बहुत से लाइका गोल्ड सुनने वालों से हमारी मुलाकात हुई। यहाँ के जो सीईओ हैं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, जिन्होंने नई फ्रेंचाइज लिया है, सबसे बातचीत हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ मीट स्टफ नहीं है, मीट के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सा फ्रोजन स्टफ भी है, मसालाज हैं। एंड जो ऑफर लगाई थी इन्होंने आज की, 1 पाउंड की अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको 50 पाउंड तक वर्थ की चीज़ें मिलेंगी। तो क्यों इतनी लंबी थी कि 100 के बाद भी लोग थोड़े से लोग डिसअपॉइंट हुए कि ओ हमारा 100 में नाम नहीं आया। और बहुत से पहले से ही 9 बजे से भी पहले से क्यू में खड़े थे और उन्होंने इस जो स्पेशल ऑफर थी इसका फ़ायदा उठाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी अगर आप आसपास के इलाके में रहते हैं और पहले कभी तारिक हलाल पे नहीं गए हैं, जो कि साउथ हैरो में भी ब्रांच है, यहाँ नज़दीक नज़दीक हैं और ब्रांचेस, लेकिन ये लोकेशन बहुत अच्छी है, रेनर्स लेन स्टेशन के बिल्कुल नेक्स्ट डोर है और बहुत बड़ी बहुत शानदार शॉप है। एंड यहाँ पर मीट के अलावा और भी बहुत सारा सामान है, तो आप आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और इनकी स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। सो रवि जी आप भी प्रोग्राम खत्म करके यहाँ आ सकते हैं।
0: नहीं मैं नहीं आ सकता, आप जानते हैं क्यों नहीं आ सकता। ऐसा है सरिता जी, सरिता जी,
1: हाँ जी,
0: बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपको और हमारे क्लाइंट्स को। मेरी कुछ व्यस्तताएं हैं, लेकिन रूबी हैं वहाँ पर, आप हैं, बाली भाई तो वहाँ से आ चुके हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग वहाँ आ रहे हैं आप उनसे बातें करेंगी और लाइका रेडियो नेटवर्क,
1: बहुत सी बातें की हैं
0: लाइका रेडियो नेटवर्क के विषय में।
1: जैसे कि मैं कह रही हूँ कि सिर्फ मीट ही नहीं है यहाँ पर, और भी बहुत सा सामान है, लाइक ऑयल है, मसाले हैं, फ्रोजन स्टफ है, और भी शॉपिंग की जा सकती है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: अगर कोई मीट नहीं करता
0: तो आप एक बार फिर से एड्रेस बता दीजिए लोगों के लिए और बता दीजिए ये इवेंट जो चल रहा है क्या है, तो फिर मैं आपसे जो है अनुमति लूंगा कार्यक्रम में।
1: एग्जैक्टली मुझे डोर नंबर नहीं पता है, लेकिन रेनर्स लेन जो स्टेशन है उसके बिल्कुल नेक्स्ट डोर है। तो पोस्टल एड्रेस क्या है, यहाँ के जो सीईओ हैं वो मेरे साथ हैं इस वक्त, तो आप बताएंगे कि एड्रेस क्या है।
2: The address is
1: 297
2: Rainers Lane.
1: Rainers Lane.
2: HA5.
1: Yeah. 5EJ.
0: और पार्किंग का कैसा है वहाँ पर सरिता जी?
1: पार्किंग यहाँ बिल्कुल इजी है, यहाँ पर मीटर पार्किंग है और येलो लाइन में सिंगल येलो लाइन भी है, तो आराम से शॉपिंग करने के लिए यहाँ आ सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं सभी स्पेशल ऑफर्स का भी।
0: थैंक यू वेरी मच सरिता जी, ऑल द बेस्ट टू द क्लाइंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू आवर स्टाफ मेंबर्स हु आर देयर। और बहन भाइयों जो आप सुन रहे हैं, तो वहां जाकर के सरिता जी से, रूबी, रजा से, बाली भाई तो आ चुके हैं, ये वहां थे अर्लियर, बट आप इनसे मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सरिता जी अगेन।
1: थैंक यू, बाय बाय।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: और हमें याद आई भाई सोना महापात्रा, ये जो है सिंगर हैं, बड़ी अच्छी सुरीली गायिका हैं, इनकी आवाज़ में कई फिल्मी गीत भी रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी की याद आ गई भाई, आज वो दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। और साहब आज ही जन्मदिन टेनिस प्लेयर लिएंड्रो पेस भाई, वो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर होते थे, आजकल कहाँ हैं मालूम नहीं, लेकिन राजनीति ज्ञ पॉलिटिशियन है, आज उनका भी जन्मदिन है। 17 जून को 1942 में वो जन्मे थे। और अमृता राव फिल्म अभिनेत्री हैं भाई, उनका भी बर्थडे आज है। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हमारी ओर से और हमारे लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से।
1: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं पाउंड का रेट। आज भाई पैसे भिजवाने हों अपनों को तो भारत में पैसे भिजवाने के लिए उनकी सेवाओं का इस्तेमाल कीजिए। आज का रेट फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 126.35 इंडियन रुपीस। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भाई एक ऑफर और है कि इफ़ यू सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून, then by there is a chance to win 75 pounds voucher every day. 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Iske alawa 1 gram gold coin bhi jeetne ka chance hai every week when sending over 2000 pounds. TNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
4: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम 3,299 pounds पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154848 6.
5: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
11: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
12: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
13: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
14: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
13: ये तो बताओ, कोई पता चला?
15: गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
13: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
15: शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
16: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
17: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पण बधु ऑलराइट छे।
18: મે છે ને બેક ટુ બેક ત્રણ મૂવીઝ જોઈ લીધી।
17: ગેટ રેડી ફોર અ ફૂલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વીરજ ગેલાણી એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ ઇન ધ મૂવી। બધુ ઓલરાઇટ છે,
18: બે ત્રણ કલાકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધુ ઓલરાઇટ થઈ જશે।
17: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન। ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ।
19: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે।
20: લેજેન્ડ ગુડ ન્યૂઝ, આપકા ફેવરિટ આઈટેક અબ TRS કેશ એન્ડ કેરી સાઉથ હોલ મે। હ્યુજ વેરાયટી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ક્લુડિંગ ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ વિથ બેટર પ્રાઇસિસ, પરફેક્ટ ફોર રિટેલર્સ, ટ્રેડર્સ, ટેકઅવેઝ એન્ડ Atrex iTech is open 24/7 with free parking. Full attack at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
21: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
22: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
23: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
24: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: Artist of the Week, इस सप्ताह के कलाकार का नाम है हरिहरन। फादर्स डे आ रहा है ना 21 तारीख को, और भाई हरिहरन के गीतों में कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं। ये गीत सुनिए, इसमें भाव है कि परमपिता परमात्मा का स्वरूप हम अपने पिता में, अपनी माँ में, अपने पेरेंट्स में कैसे देख सकते हैं।
25: मगर फिर भी अनजाने हैं।
0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक हरिहरन।

0: What a song, हरिहरन की आवाज भाई हटके है। हम इनका नाम लिया करते थे ए हरिहरन, और मैं ढूंढ रहा था कि ए किसको रिप्रेजेंट करता है। भाई ए हरिहरन पूरा नाम है इनका, अनंत सुब्रमणी हरिहरन। ए हरिहरन अनंत सुब्रमणी हरिहरन, 3 अप्रैल 1955 में इनका जन्म हुआ था। यकीन नहीं आता 71 के हो गए, पर आवाज़ में दम खम भाई बरकरार है, रियाज है बहुत लंबा और बहुत सुरीले गायक कलाकार हैं। और आप जानते हैं कि 4 जुलाई को इनका प्रोग्राम हो रहा है यहाँ। पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं और भी बहुत सारे अवार्ड इनके नाम हैं। इस सप्ताह के कलाकार हैं ए हरिहरन, यानी अनंत सुब्रमणी हरिहरन।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: शर्मा जी बड़े गंभीर गीत सुनवा रहे हैं, आज बुधवार इसका आपको ख्याल ही नहीं है। हाँ नहीं, कुछ चटपटा मसाला कुछ ऐसा होना चाहिए ना, कोई गीत प्यार करने वालों के नाम। नहीं, प्यार करने वालों के नाम नहीं, प्यार में मरने वालों के नाम।

0: प्यार किया कोई जंग।
1: अरे प्यार और जंग में ज्यादा फर्क नहीं है। देखो पहले प्यार करते हैं, प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, फिर शादी करते हैं, और शादी के बाद तो जंग ही होती है ना। नहीं देखो, वो एक वो प्रेमी बता रहा था, कहता एक जमाना था मैं बोलता था, मेरी प्रेमिका सुनती थी, मुझे बहुत सुनती थी, सुनने वाले कहाँ मिलते हैं आजकल। कहते फिर हमारी शादी हो गई, पत्नी बोलने लगी मैं सुनने लगा। बहुत बढ़िया भाई। मैंने कहा आजकल तो बच्चे भी हो गए हैं आपके दो, अब कौन बोलता है कौन सुनता है। कहते हैं आजकल हम दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं।

0: बस करो बस करो, इश्क की बातें बंद करो, क्रिकेट की बातें शुरू करो। भाई आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कमल प्रभाकर, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं और एसेक्स के लिए खेल चुके हैं, इंग्लैंड के लिए भाई वो जाना माना प्रतिष्ठित नाम है कमल प्रभाकर, और वर्ल्ड कप विमेंस आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप की भाई रिपोर्ट वो करते हैं, इस समय हमारे साथ हैं। हेलो कमल।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और लीजिए साहब अब जुड़ते हैं।
3: ये है Laika Gold, 10:35 AM.
1: Women's cricket updates presented by Kamal Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
4: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Laika.
0: Very good afternoon to you, Kamal.
5: Very good afternoon, Ravi ji. All the women are asking, where is Ravi Sharma ji not come to the match?
0: चल झूठे।
5: एनीवे रवि जी, वी गॉट ए ग्रेट गेम हियर, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया, और बांग्लादेश ने पहला बैटिंग की, क्या शानदार बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने किया कि दे गॉट देम फॉर 77 for 8 इन 20 ओवर्स बांग्लादेश,
0: और 77
5: हाँ जी 77 for 8
0: एंड
5: रिप्लाई ऑस्ट्रेलिया का 21 for no loss इन 3 ओवर।
0: ये लगता है ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाएगा,
5: ये जाने लग रहा है उधर। और फिर उसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है इंडिया का नेदरलैंड्स के साथ, वो भी इसके बाद स्टार्ट होगा 2:30, तो उसके लिए अभी टीम वार्म अप हो रही है।
0: उसमें क्या लगता है आपको, किसका किसका पलड़ा भारी रहेगा?
5: उधर तो मुझे इंडिया का ही लग रहा है, ऑल्दो नेदरलैंड्स गेव अ गुड गेम टू इंग्लैंड द अदर डे, बट आई थिंक इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और तीसरा गेम है रवि जी, साउथ अफ्रीका टेकिंग पाकिस्तान, ये जो है आज का बहुत बड़ा मैच है आउट ऑफ द टू वेरी गुड ब्रिलियंट साइड्स।
0: तो ये साउथ अफ्रीका पाकिस्तान शाम को है ना, कितने बजे है?
5: हाँ जी वो 18:30।
0: ओके, तो हम नतीजों के लिए आपसे निरंतर संपर्क में रहेंगे और आप क्रिकेट की जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच कमल, एंड आई बिलीव यू हैव बीन कनेक्टेड टू अदर प्रोग्राम्स एज वेल टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, लॉट ऑफ क्रिकेट, और अब भाई और भी क्रिकेट आ रही है यहाँ यूके में, भारत की टीम आ रही है, तो आपसे हमारा संपर्क बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच
5: जी रवि जी, पर आप भी कोई गेम में आना जरूर, देखें कि विमेन क्रिकेट कितना इंप्रूव हो गया और इतना स्किलफुल हो गया, तो इट बी लवली टू हैव यू।
0: भाई देखो बात ये है, आगे तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं तो विमेन क्रिकेट ही देखता हूँ, अगर क्रिकेट में जाता हूँ तो मैं विमेन ही देखता हूँ, चाहे वो चीयर गर्ल्स ही देखता रहूँ।
5: That's it, रवि जी, keep up with the good work. Thank you so much. All the best. Thank you very much.
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Laika for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
4: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LAIKA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
1: This is Laika Gold.
6: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: अरे ओ चमिया, अरे कुछ नाच वाच हमका भी दिखाई दे।
7: नहीं नाचूंगी।
0: कैसे नहीं नाचेगी, है एडवांस दिया है, जब तक तेरे पांव चलेंगे तेरे यार की सांसें चलेंगी। सुन लिया।

0: ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत गाना, और ओरिजिनली सुदेश भोसले जी ने ये गाना गाया था केसी बोकाड़िया की फिल्म के लिए, और केसी बोकाड़िया जी ने उनको जब गवाया तो शब्बीर कुमार जी केसी बोकाड़िया जी के पास पहुंचे और कहा कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है, इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं मिल रहा है, तो ही बैडली नीडेड। 1990 में शब्बीर कुमार जी की हालत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने कूली फिल्म वगैरह वगैरह सारी फिल्मों में अच्छे अच्छे गाने गाए थे। अमिताभ बच्चन जी के लिए भी गाना गाया था, मतलब ही वॉज डूइंग क्वाइट वेल इन एवरी एस्पेक्ट, बट सडनली मशीनरी थोड़ी स्लो हो गई, एंड एंट्री ऑफ कुमार सानू, उदित नारायण, ये सब सिकंदर आ गए, तो फिर प्रॉब्लम हो गया था। सो उन्होंने जब गुजारिश की तो केसी बोकाड़िया जी ने रीड अप करा के ये गाना उनसे गवा दिया, एंड सुदेश भोसले जी वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट, लेकिन केसी बोकाड़िया जी ने उनको वादा किया था कि मैं आपको दूसरे गाने भी मैं ज़रूर गवाऊँगा, आप कहें तो हम वापस आपका गाना डाल दें। उन्होंने कहा नहीं, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू अपसेट शब्बीर कुमार आइदर। सो इन्होंने रिश्ता निभाया, एंड द कूलेस्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री, एकदम साइलेंट बट डेडली, एंड दैट इज सुदेश भोसले जी। इतने टैलेंटेड कलाकार, लेकिन ऑलवेज रिमेनिंग वेरी काम एंड कूल, सबको हंसाते रहते हैं और अपने आप भी हंसते रहते हैं। ऐसे इंसान को जानना बहुत अच्छा लगता है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड अलॉन्ग विद जॉनी लीवर साहब। काफ़ी नाम है मेरे पास, लेकिन उनमें से टॉप नाम पे ही इन दोनों का नाम आता है। सो ये कहानी मुझे तो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था जब मैंने कहा कि सुदेश जी आपकी लाइफ बन सकती थी इस गाने से, लेकिन बोलते तकदीर का खेल होता है। उसमें अमिताभ बच्चन जी का वो कूली वाला, आई मीन हम वाला गाना जो था, जुम्मा चुम्मा दे दे, वहाँ से इनको काफ़ी फेम मिली। अब मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन। एंड कल बड़ा मज़ा आया मुझे, घर पे मैंने एक वीडियो बनाया जैमिन का, क्योंकि समर चल रहा है और ऑफ कोर्स आम का रस वो तो बहुत ही प्यारा लगता है इस सीज़न में। सो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया कल। स्पेशली वॉन्ट टू थैंक सीता फॉर दैट, फॉर हेल्पिंग मी आउट, एंड क्रुणाल फॉर हैविंग एडिटेड एंड ऑल दैट, एंड फुल बैकिंग फ्रॉम अलका शाह, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स टू जैमिन हु हैव स्पॉन्सर्ड दिस शो ऑफ माइन, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद देम, एंड आई होप दे आर हैप्पी विद अस एज वेल। एंड आगे जाते हुए सेकेंड आवर में मैं ऐसा एक ट्रिब्यूट करने वाला हूँ जिसको मैंने 3 महीना इसके ऊपर मेहनत की है। 3 महीने के बाद मैंने पूरी स्टडी की इस इंसान की। ये इंसान इतना टैलेंटेड था कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में सबको पता था कि हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं से, कोई वेस्ट से या जापान से हो या मिडल ईस्ट से हो, कहीं ना कहीं से गाना उठा के इन्होंने उसमें से दूसरा गाना बनाया, सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स। लेकिन एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने कभी कोई कॉपी नहीं की और ओरिजिनल गाने बनाए, लेकिन मिजाजी थे, इनका मिजाज बहुत ख़राब था। ही वॉज सच अ डिसिप्लिनेरियन कि उनको कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशंस के सामने, अगर कोई म्यूजिशन का इंस्ट्रूमेंट ट्यून में नहीं होता था तो गुस्सा करते थे। उनको लाउड सिंगिंग पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने काफ़ी सिंगरों के अलग अलग नाम भी डाले हुए थे। इनको नौशाद का म्यूज़िक इन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने सशादर मुखर्जी को रिफ्यूज़ कर दिया फिल्म के लिए, फिल्म के म्यूज़िक के लिए, बिकॉज दे वर सेइंग कि हमारे टर्म्स पे आपको काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरे टर्म्स पे काम करूँगा। जहाँ संगीत की बात आती है, दिलीप कुमार साहब के साथ इन्होंने झगड़ा मोल लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको नहीं बता, एक डायरेक्टर आपको बताता है कि हाथ दायां हाथ आपको ऊपर करना है, तो मैं वहां जाके शूटिंग में आपको दखल नहीं देता कि आपको बायां हाथ ऊपर करना चाहिए या डायलॉग ऐसा बोलना चाहिए। अगर मैं आपके काम में दखल नहीं देता हूं, आप मेरे काम में क्यों दखल दे रहे हो? सो दिलीप कुमार साहब के साथ भी इनकी बहस हो गई। दूसरा आई वुड से लता जी बहुत डरती थी इनसे गाना गाने के टाइम पे, क्योंकि ही वॉज सो स्ट्रिक्ट इन एवरी वे। बहुत सारे लोग, और एक बार मदन मोहन जी ने इनका गाना कॉपी कर लिया। अभी मदन मोहन जी की रेपुटेशन देखो, ही सच अ वंडरफुल कंपोजर, लेकिन उन्होंने इनका गाना लिया तो वो गुस्सा हो गए। और एक बार उन्होंने एक पार्टी तो नहीं थी, आई थिंक ही वॉज वो कहाँ पे उनको कभी मिले थे इन अ पार्टी तो नहीं थी, इट वॉज अ गेट टुगेदर या कोई मीटिंग थी, वहाँ पे उन्होंने उनको बोल डाला कि आजकल तो परछाइयाँ भी घूमने फिरने लग गई है। इन्होंने हॉट टेम्पर्ड जो थे वो, उन्होंने एक कॉन्सर्ट था, हाँ एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में वो उन्होंने मदन मोहन को देख लिया तो उनके पास जाके बोला, क्योंकि इन्होंने कॉपी किया था उनका गाना, बोले आजकल तो परछाइयाँ भी घूमने फिरने लग गई है। लेकिन मदन मोहन जी ने क्या जवाब दिया वो सेकेंड आवर में हम ये ट्रिब्यूट करेंगे, और ट्रिब्यूट में हम आपको सब कुछ बताएंगे। विकिपीडिया में काफ़ी गलतियाँ हैं इनके बारे में, बोला गया है इज़ अ कंटेंशियस पर्सन, ही वॉज नेवर कंटेंशियस, इनकी वजह थी, वो जब गुस्सा करते थे इनकी वजह थी, वो जानकर ऐसे ही पंगा नहीं लेते थे। सो ऐसे इंसान के उनके बड़े बेटे के साथ मैंने बात की जो ऑस्ट्रेलिया में है अभी, तो उनसे बात जब हुई तो उन्होंने मुझे सब कुछ करेक्ट करके बताया। विकिपीडिया में लिखा हुआ है उनकी एक बेटी, लेकिन दो बेटियां थी, वो भी गलत है विकिपीडिया में, बोला कंटेंशियस पर्सन थे। कंटेंशियस मतलब बहुत गंदा वर्ड है वो किसी के बारे में, बट आई गेट ऑफेंडेड जब किसी के बारे में गलत चीज़ बोली जाती है, एंड आई ऑब्जेक्टेड टू इट, मैंने कहा ही वॉज नॉट कंटेंशियस। हम इनके बारे में बात करेंगे सेकेंड आवर में, जुड़े रहिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.35 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
6: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
5: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
6: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
5: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
7: Two businesses.
8: Same town.
7: Same service.
8: One appears on page one of Google.
7: The other doesn't.
8: Guess which one gets the customer?
7: The truth is brutal.
8: The first page of Google gets the business.
7: Everyone else gets what's left.
8: So here's the real question.
7: When your customers search for what you sell, do they find you?
8: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
11: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
12: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
11: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
12: Exclusive radio partner, Laika Radio Network. Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
13: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
14: गड़बड़ घोटाला छे, problems मोटा छे, पर बदु alright छे.
15: नेचे ने back to back तरण movies जोई ली थी.
14: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie बदु alright छे.
15: बेहतर कलाकार पाचो आवे जैसे पच्ची बदु alright थे जैसे.
14: In cinemas on 12th of June. For more info visit Bakrania Media's Instagram handle.
16: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે.
17: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
18: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
17: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
18: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
17: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
18: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
19: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
20: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
19: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
21: 10 days to Turkey guaranteed. Departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
22: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
23: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
24: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मदन मोहन, क्या कॉम्पोजिशन, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. एंड लाइक विजय गोडोरी सेड, इज काइंड ऑफ सिग्नेचर ट्यून ऑफ अनीसा नासर जीज शो वेन एवर शी इज ऑन रेडियो. एंड आई लव दिस सॉन्ग माई सेल्फ. क्या कॉम्पोजिशन.
1: Reminisce those classics on Like a Gold.
0: ये गाना उषा खन्ना जी ने जो तीन वर्जन्स में बनाया, इट्स ऑलवेज एन एवरग्रीन वन. तीन वर्जन में से द फास्टेस्ट वर्जन इज बाय रफी साहब. आप तो ऐसे न थे 1980, हेमलता जी ने गाया और कौन, मनहर उदास. दिस इज रफी साहब.

एक अलग ही अंदाज से उन्होंने नूर जहां को गवाया फिल्म दोस्त में, 1944 की फिल्म। उसमें डायरेक्टर थे जो ऑफ कोर्स जिन्होंने शादी की थी नूर जहां जी के साथ, और नूर जहां जी के जो हस्बैंड थे उनके साथ ये फिल्म इन्होंने की थी, और उनका नाम था शौकत हुसैन रिजवी जो नूर जहां जी के हस्बैंड थे। 9 गाने, कोई मेल सॉन्ग नहीं था फिल्म दोस्त में, 9 गाने इन्होंने कंपोज करके नूर जहां जी को गवाए। ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस, नो कॉपीज फ्रॉम एनीवेयर। दिस मैन हैड अ रेप्यूटेशन, सज्जाद हुसैन। आज की तारीख में इनको मिस किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भी गाने बनाए वो हर एक म्यूजिक डायरेक्टर झुक के बोलता है कि कहीं पे आपको इसकी किसी की कॉपी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस बैठ के बनाए थे, इतने मुश्किल। और लता जी के वन ऑफ द फेवरेट बिसाइड मदन मोहन, ही वॉज ऑल्सो अ फेवरेट ऑफ लता जी एंड इन एज अ कंपोजर। अब सज्जाद हुसैन के बारे में मैं बात करता हूँ। He was born on 15th of June 1917 in a village called Sitamau, or that was Mandsaur district in Madhya Pradesh. And he passed away at the age of 78 on 21st of July 1995 in Mahim. Mahim ek bada pyara area hai Mumbai ka. And inke pitaji Muhammad Amir Khan, Muhammad Amir Khan ne unko sitar bajana sikhaya. He taught him how to play sitar. Now the enthusiastic Sajjad, he learned to play another 20 instruments. Usme se mujhe to 15 instruments mujhe malum hai. He learned and mastered playing violin. He learned veena, jalta.

0: रंग, फ्लूट, पियानो, बैंजो, एकॉर्डियन, हवाईयन और स्पेनिश गिटार्स, हारमोनियम, सितार तो मैंने कहा, क्लैरिनेट, हार्प, मैंडोलिन, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने मास्टर कर लिए. एंड ही वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड अ वेरी नॉलेजेबल मैन अबाउट म्यूजिक. बट इनका प्रॉब्लम पता क्या था? ही वॉज वेरी टेम्परामेंटल यानी कि डिसिप्लिनेरियन. इनको अच्छा नहीं लगता था एनीबडी डूइंग लाउड सिंगिंग ही डिड नॉट लाइक. और मजाक भी करते थे. और विकिपीडिया में अगर देखो तो वो लोग बोलते हैं कि इनका इंसल्ट कर दिया, इन्होंने किशोर कुमार का इंसल्ट किया. ही डिड इंसल्ट हिम. ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे का मजाक तो उड़ाते ही हैं. इन्होंने किशोर कुमार को कह दिया शोर कुमार, क्योंकि बहुत नॉइजी सिंगर है. एंड देन इनको तलत महमूद को कह दिया गलत महमूद. ऐसे ऐसे कमेंट्स वो पास करते थे आउट ऑफ यू कैन से जोकिंगली, लेकिन लोग सीरियसली ले लेते थे. ही क्रिटिसाइज्ड नौशाद्स म्यूजिक. He never liked loud singing, like I said, and he insisted on all musical instruments to be perfectly tuned. ये discipline बहुत था इनमें. अगर कोई musician आया और उसका instrument tuned नहीं होता था, he used to get angry. अभी इन्होंने हलचल फिल्म की थी के आसिफ के साथ 1951 में. अब वो फिल्म के बाद दूसरी बार इनका अनबन हो गया के आसिफ के साथ, producer director के आसिफ. और फिल्म कौन सी थी? मुगले आजम 1960 की. तब इनकी उम्र थी आई थिंक ही वॉज 43 ईयर्स ओल्ड. और इनकी अनबन हो गई के आसिफ के साथ बिकॉज इनके ख्यालात चेंज होते थे. उन्होंने कहा कि म्यूजिकली मेरे ख्यालात जो हैं वो मैं चेंज नहीं करूँगा. के आसिफ ने कहा आपको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग. और इन डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने फिल्म छोड़ दी. और मुगले आजम जैसी फिल्म इन्होंने नौशाद जी को मिल गई वो फिल्म. एनी रिजेक्टेड एन ऑफर बाय सशादर मुखर्जी ऑफ फिल्मिस्तान. कैन यू बिलीव सशादर मुखर्जी. अब हुआ क्या कि 9 गाने इन्होंने गवाए हमारी नूरजहां मैडम को. और जब उनको गवाया तो इनके हस्बैंड जो थे इन्होंने बोल दिया ही गेव द एंटायर क्रेडिट ऑफ द फिल्म एंड द म्यूजिक टू हिज वाइफ नूरजहां. और ये चढ़ गए. इनका टेंपर बहुत ख़राब था सज्जाद हुसैन जी का. एंड जायज़ था इनका गुस्सा. इन्होंने कहा कि आई विल नेवर वर्क विद नूरजहां अगेन. और इन्होंने कभी नहीं काम किया उसके बाद, क्योंकि उनकी मेहनत जो थी वो शौकत हुसैन रिजवी जी ने, उनके हस्बैंड ने पूरा क्रेडिट दे दिया नूरजहां को. वो डायरेक्टर थे उस फिल्म के. फिल्म थी दोस्त 1944 की. लेकिन इनको बड़ा गुस्सा आया. अभी नूरजहां मैडम जी ने उनके हस्बैंड को भी डांटा और कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यू शुड गो एंड अपोलोजाइज टू हिम. लेकिन इन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया. अब शुरुआत करते हैं 1937 से. इनका जन्म हुआ 1917 में. 20 साल की उम्र में सज्जाद हुसैन डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक एज अ फिल्म स्कोर कंपोजर. सो वो चले गए बॉम्बे, वो नगरी, द सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन, विद हिज एल्डर ब्रदर निसार हुसैन. इनका पहली नौकरी एट सोराब मोदी की मिनरवा मूवी टोन में एट 30 रुपीज अ मंथ. एंड लेटर ही मूव टू वाडिया मूवी टोन. क्यों? क्योंकि वहाँ पे 60 रुपया मिल रहा था. तो वो वहाँ चले गए टू वाडिया मूवी टोन फॉर 60 रुपीज अ मंथ. फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ही वर्कड एज एन असिस्टेंट टू कंपोजर्स मीर साहेब एंड रफीक गजनानी. And then as a contract instrument player for Shaukat Hussain Rizvi. Wohi Shaukat Hussain Rizvi, jo inke husband, Madam Noor Jahan ke. 1940 mein inki umr thi 23 saal ki. Sajjad was introduced to a composer, Mir Allah Bakhsh. Malum hai Mir Allah Bakhsh kaun? Of course, aapko malum hai. The father of Meena Kumari. Yeah. And then Mir Allah Bakhsh was very impressed with Sajjad's mandolin skills. Wo jaise mandolin bajate the. And he employed him as an assistant. Later, Sajjad became assistant to music director Hanuman Prasad, where he composed two songs for the film Gali. Film ka title tha Gali, 1944 ki. Umr thi inki 26 saal ki. Aur Hanuman Prasad ji ne kaha, chalo do gaane tum compose karo. Main dekhta hoon कैसे कंपोज करते हो आप, एंड आई विल एनकरेज यू टू डू दैट. उन्होंने दो गाने कंपोज किए फिल्म गाली में. उम्र थी 26 साल की. और ये लड़का जो 26 साल का नौजवान 21 इंस्ट्रूमेंट्स बजाता और क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेनिंग लिया हुआ एंड परफेक्ट कंपोजर, ही कंपोज्ड टू सॉन्ग्स विच वॉज आग लगे सावन में और अब आजा दिल ना लगे, both sung by Nirmala Devi. Now, as an independent music director, unhone film Dost ki, that was the first one, jahan pe director kaun the, Shaukat Hussain Rizvi. And then one of the best scores of Sajjad was the film Rustam Sohrab. Rustam Sohrab ka gana abhi maine aapko jo sunaya tha, pehla gana jo tha ye kaisi ajab dastaan. अब मैं दूसरा गाना लता जी का गाया हुआ ए दिलरुबा दिलरुबा. जब मैंने इनके बेटे से बात की, अब सज्जाद हुसैन की फैमिली के बारे में अगर बात करूं तो ही हैड 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स. अब अगर विकिपीडिया में देखोगे तो देव सेड 1 डॉटर, क्योंकि ये करेक्शन सब मैंने 3 महीने से इनको स्टडी किया. और सज्जाद हुसैन के सबसे बड़े बेटे मुस्तफ़ा जी जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनको बुलाया गया है टू प्ले मैंडोलिन. ही इज सच अ फैंटास्टिक म्यूजिशियन हिमसेल्फ एंड वेरी बिजी. दुनिया भर में उनको बुलाया जाता है. एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट हिज फादर मुस्तफ़ा यूसुफ नूर मोहम्मद नसीर अहमद और अब्दुल करीम. 5 बेटे और 2 बेटियाँ, मरियम और सायरा बेगम. अभी इन्होंने रुस्तम सोराब जो फिल्म की 1963, तब इनकी उम्र थी 46. एंड सुरैयाज गाना, लता का गाना, मैं अभी लता जी का सुनाऊंगा आपको. एंड बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट टेम्पर ही हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द लिरिक राइटर डी एन मधोक. एंड दैट वाज फिल्म सैया इन 1951. दिलीप कुमार जी के साथ भीड़ गए क्योंकि संगीत कर रहे थे फिल्म संग दिल का. संग दिल का म्यूजिक करते करते जब दिलीप साहब ने कुछ सजेस्ट किया म्यूजिकली, इन्होंने कहा मैं आपके काम में दखल नहीं देता हूँ, आप मेरे काम में दखल मत दीजिएगा. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. वहाँ इनसे भीड़ गए दिलीप कुमार साहब से, मतलब के दिलीप कुमार साहब बोलेंगे नेक्स्ट टाइम इसको मत लाना एज माई म्यूजिक डायरेक्टर. तो इनकी फिल्में कम होती गई. 33 years, 1940 से 77 तक इन्होंने जो काम किया फॉर 33 years, आई थिंक 1940 से 77, 37 years में इन्होंने सिर्फ तकरीबन 17 to 20 films की होगी. तो बिकॉज ऑफ ए शॉर्ट टेम्पर ऑब्वियसली तलत महमूद, किशोर कुमार सबको नाराज कर दिया था, नौशाद साहब को, के आसिफ को, सशादर मुखर्जी को, सबके साथ इनकी अनबन होती रही. लेकिन ही वॉज स्ट्रिक्ट. ही सेड म्यूजिकली डोंट चैलेंज मी. एंड एक 15 मिनट की मैंडोलिन की कंपोजिशन है विच इज फॉर ए सिन्हाला श्रीलंकन फिल्म. उसमें आप देखोगे तो इट्स आई थिंक दिव्य योगया फिल्म है एंड प्रसाद स्टूडियोज पुणे में रिकॉर्ड की गई थी. एंड द म्यूजिक वॉज सुपर डुपर हिट. सॉन्ग संग बाय रुक्मणी देवी, मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस एंड सिंगर ऑफ श्रीलंका. एंड दे आर स्टिल पॉपुलर, आज की तारीख में भी वो इतने हिट है गाने. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ माएस्ट्रो जिन्होंने ओरिजिनल गाने बनाए थे, नो कॉपीज. आज की तारीख में इंडस्ट्री उनको बहुत मिस कर रही है. मैं एंड करूंगा इनका ट्रिब्यूट बोलते हुए कि ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79 विद अ वेरी लिमिटेड डिस्कोग्राफी एंड लीविंग म्यूजिक लवर्स वंडरिंग व्हाट माइट हैव बीन इफ ही हैड बीन मोर प्रोलिफिक. अगर इनका स्वभाव थोड़ा अच्छा रहता और इतना टेम्पर बुरा ना होता तो शायद 20 की 40 फिल्में कर डालते और हम इनकी कॉम्पोजिशन एंजॉय करते. देखना एक एक कॉम्पोजिशन ओरिजिनल है। सुनते जाइएगा, मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ सज्जाद हुसैन।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And for one British sterling pound, you can get 126.35 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in with to win a 75 pound voucher every day when you send over 1,000 pounds. Also a 1 gram gold coin every week when sending over 2,000 pounds. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: All I can say is come on England. Aaj hoga 9 baje England versus Croatia and I'm going to have my English shirt on. England shirt football is very important in my household. So we're going to wear the proper uniform. It'll be England 9 p.m. at the Dallas Stadium, which is called AT&T Stadium, which was built, I think opened on 27th May 2009. 11 stadiums in the United States, May. This is the biggest stadium of all. And it's going to be fun watching England playing. And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
9: T's and C's apply.
10: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
11: No more worries for me or you.
12: Southall Travel, at all protected.
13: Hi, hello, okay, show, mucho, kechi, dawayana, ashu, taigo, arara, public demand, hariti ali rechu, London, maru, nao, natak laine, patni, premier league, it like a PPL, yes, from 3rd July till 12th of July, wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows, yaad rakhjo.
14: Patni Premier League. Shows at Trisleep, Alberton, East and South London, Low Room, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
15: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
16: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
15: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
16: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
15: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
17: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
0: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026. 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956-154-846.
2: तूने क्या कर रहा है रे?
18: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
18: गुरु गुरु,
19: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
2: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
20: शीघ्र शीघ्र।
19: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
21: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
22: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पण बधु ऑलराइट छे।
23: मैं छेने बैक टू बैक त्रण मूवीज जोई लीधी।
22: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी केओस विथ वीरज गिलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी। बधु ऑलराइट छे।
23: बेतर कलाकमल पाछो आवी जशे ने पछी बधु ऑलराइट थई जशे।
22: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियास इंस्टाग्राम हैंडल।
24: एवू लागे छे के पिक्चर चालछे।
25: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
26: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
27: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
26: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
28: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
29: ये है Like a Gold.
0: Okay, I got big news for you and main hoon Pali Brahmbhatt on Laika Gold and we are going to tell you about Hariharan. And Hariharan ji is coming, of course, to UK for Soul India at Royal Festival Hall, London, Saturday, 4th of July. Saturday? 4th of July, tickets at southbankcentre.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio Network. And he's gonna sing all his film songs and a few ghazal songs, his favorite ones and your favorite ones, and Colonial Cousins. He'll also give you a touch of that. And the show is gonna be hosted by Beena Mistry. Don't forget, it's 4th of July, Saturday. Tickets at southbankcentre.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio Network. And Laika Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand, Ragasan. Details at laikaradio.com. And aage jaate hue, I can tell you about Tariq Halal. Laika Radio Network teamed up with Tariq Halal for the opening of their new Raylands Lane branch on today, that was this morning, 17th June, located at 297 Raylands Lane, Pinner HA55EJ. And the first 100 customers had got... I think what they had got is if they spent £1, they received £50 worth of food items. And not only that, it was chock-a-block and people had come there. And Tariq Halal ke owner, jo Tariq bhai hai, तारिक भाईजान ने सबको इतनी अच्छी तरह वेलकम किया वहाँ के पीछे का मॉस्क जो है रेनर्स लेन में, वो मॉस्क के मौलाना जी ने ओपनिंग सेरेमनी की थी। ही वाज सो वेल स्पोकन एंड एवरीथिंग वेंट हंकी डोरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू तारिक हलाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच एट 297 रेनर्स लेन पिना HA55EJ लाइका रेडियो नेटवर्क। We were broadcasting live from there. I was with Sarita Sabharwal ji and Ruby Raza. And not only that, we were with Kamlesh Sawalia, our head of marketing there.
1: Like a gold.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
4: This is Leica Gold across Greater London. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Make this summer memorable with Southall Travel. Explore beach breaks, city escapes and more with holiday deals that include flights, hotels and atoll protection. Trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Visit Southall Travel or call on 0208-574-8410.
4: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
0: It's so wonderful to see South Asian women in sports. Hosted by Deep Raja, podcast episode 21, Breaking Barriers in a Male-Dominated Field, Why Representation Matters. You gotta watch Deep Raja with South Asian Women in Sports, podcast episode 21, Leica Extra podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
4: Leica Extra is here.
29: We head Leica Gold.
5: Need anything from Tesco? Celebrate every kind of dad with Toblerone milk chocolate. Now just £3.50, down from £7.
6: Club card accepted.
5: Because every little helps. Majority of larger stores, 340 grams, ends 21st of June. Club card or app required.
7: Gold Afternoons.
8: Gold Afternoons.
7: Proudly sponsored by Jemin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
9: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
10: TravelHub, best service with unbeatable price.
9: At all protected.
10: Visit TravelHubWorld.com. Come.

ये गाना कंपोज किया सज्जाद जी ने। जी हाँ, सज्जाद हुसैन जिनकी ट्रिब्यूट मैंने की। अब सज्जाद हुसैन ने ये गाना जब कंपोज किया तो मदन मोहन जी को बड़ा प्यारा लगा ये गीत, और उन्होंने ये गाने को कॉपी किया, और ये गाने की कॉपी कुछ यूं जाती है। सेम मेलोडी।

0: ये गाना बाहुब उन्होंने लिया, गाना मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा, और एक फंक्शन में जब सज्जाद हुसैन ने मदन मोहन को देखा तो उन्होंने कहा आजकल तो परछाइयाँ भी घूमने फिरने लग गई है, और मदन मोहन जी ने रिप्लाई दिया कि आई कुड नॉट फाइंड एनी बेटर म्यूजिक डायरेक्टर टू कॉपी। वहाँ पे सज्जाद जी चुप हो गए।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: Hope you enjoyed the tribute, and those who didn't, sorry.

आज ट्रिब्यूट्स देखे जाए तो इतने सारे हो सकते हैं और हो सकते थे, क्योंकि हमारे मोतीलाल जी, डू यू रिमेंबर मोतीलाल राजवंश, ही पास्ड अवे ऑन 17th of June 1965 एट द एज ऑफ 54। और सबसे पॉपुलर इनका गाना जिंदगी ख्वाब है, जो इन पे पिक्चराइज किया गया था, जागते रहो फिल्म, राज कपूर जी। और इतने खूबसूरत नौजवान, ही ऑल्सो मेड अ फिल्म।

0: मोतीलाल जिनको हमने याद किया आज, उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया। सैंडी शाह इज हियर एंड राजबदन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स। कल तक के लिए इजाजत।
1: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी. दिस इज लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. पूछें आप सबसे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? हाय हाय, मिड वीक आ गए भाई. मेरा तो सबसे चहीता लाडला फेवरेट दिन है वेंसडे. फील गुड वेंसडे. दो दिन इधर, दो दिन उधर, आहा, क्या बात है. सो वेंसडे आते से एक तो मैं ऐसे ना तितली की तरह चहकती हूँ. पर तितली की तरह चहकते हैं या फिर बर्ड्स की तरह चहकते हैं, आई डोंट नो. ओके, कुछ तो है. चहकती हूँ, यस. वेंसडे को मैं जनरली ज़्यादा ही चहकती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है चहकना. सो भाई, आप लोग कैसे हैं? वेंसडे इवनिंग है ना, आ गए घर पे, पहुँच गए. कैसा रहा दिन? हेक्टिक था. अभी बात नहीं करती है, कोई बात नहीं. आराम से बैठिए, चाय कॉफ़ी लीजिए, कुछ खाइए पीजिए. आराम से अपने पैर लंबे करके सोफे पे पसर जाइए. या काम पे लगना है तो ऐसा है दीदी एंड भाई साहब, हाथ वाथ धो लो फटाफट, हाथ मुंह धो लो हैंड वॉश से. ओके, वो 3 मिनट हम लोग हाथ धोते थे, हैप्पी बर्थडे टू यू गिनते थे, है ना, रिमेम्बर कोविड के टाइम. ओके, और उसके बाद में हम शुरू हो जाते हैं अपने अपने कामों में. नहीं काम करना है, गाना गाते हुए खाना भी खाना है. तो आज का मेरा असाइनमेंट क्या होगा, है ना? अश्विनी चुपचाप तो खाना खाने देगी नहीं, कुछ ना कुछ तो वसूल करेगी हमसे. बिल्कुल वसूल तो करने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले यस. सो आप लोगों में से कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मेरे पैर का दर्द कैसा है. तो मैंने आई ट्विस्टेड माई बिग टो, जो अंगूठा होता है, वीकेंड पे, एंड माई राइट फीट वॉज रियली स्वेल्ड अप. बड़ी गंदी हालत में थी मैं 2-3 दिन. बट टुडे, एक तो वेंसडे है ना, मैंने कहा ना मेरा चहिता दिन, तो द स्वेलिंग इज गॉन, आई एम एक्टिव एंड फाइनली आई कुड गो टू जिम आफ्टर नियरली 10 डेज. क्योंकि पिछले वीक में आई वॉज बिजी विथ माई सम ऑफ माई एक्टिंग जॉब्स, तो मैं नहीं जा पाई थी. सो आई वॉज वेरी दुखी दुखी इनसाइड, हाँ, मतलब दुखी एंड गिल्ट रहता है अजीब सा. जो लोग बहुत रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, आई एम श्योर आप लोग मेरी इस फीलिंग को समझ सकते हो, इससे कनेक्ट कर सकते हो, है ना, कि अरे जिम नहीं गए, वर्कआउट नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया, ऑल ये वाली फीलिंग होती है. एनीवेज, सो फटाफट से अपडेट ये है, येस आई एम फिटम फाट, जैसे मैं होती हूँ मस्तम मस्त. आई एम बैक टू माई रूटीन्स. और सवाल हो गया, टाइम पास सब हो गया, सब मैंने हाल चाल दे दी. अब आज का असाइनमेंट क्या है? तो हम सभी जो हैं, हमारी कोई एक ऐसी सिग्नेचर डिश होती है जो सालों से हम बनाते आए हैं, और वो ना बिल्कुल फैंटास्टिक सुपर यमिलिशियस बनती है. ओके, विथ मी इट्स दाल बाटी, बिकॉज आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. माई आई वॉज फ्रॉम मध्य प्रदेश, इंदौर. आई एम बॉर्न इन इंदौर, तो आई नो दाल बाटी बेसिकली राजस्थान की डिश है. लेकिन जो लोग मध्य प्रदेश से हैं वो लोग जानते हैं यहाँ पे दाल बाफले एंड दाल बाटी इज तो मतलब सिग्नेचर डिश है वहाँ पे. सो दैट इज़ समथिंग आई एम रियली गुड एट. एक दिन मैं आप सबको अपने हाथों की बनी दाल बाटी पक्का खिलाऊंगी, जब भी हम कभी मिलते हैं तब. ऐसा मौका आएगा शायद जल्दी ही. सो मेरी सिग्नेचर डिश है दाल बाटी, जिसमें मैं प्रो हूँ एकदम. मतलब कहते ना, आप गहरी नींद में भी उठा के बोलो कि दाल बाटी बनानी, तो मैं बना लूँगी. अभी चीज़ है, आपकी बारी है. आप मुझे बताओगे कि आपकी सिग्नेचर डिश कौन सी है, एंड उसमें तो आपका ऐसा हाथ बैठा हुआ है कि भाई साहब, मतलब कोई चैलेंज नहीं कर सकता. ठीक है, दैट्स द टास्क टुडे. फटाफट अपनी सिग्नेचर डिश मुझे लिख के भेजिए. रायता तो रायता यार, सैलेड काटते हो तो वो कुछ भी, मतलब बताओ, कुछ तो किया ही होगा किचन में, वो बताओ प्लीज़, कुछ लिख के भेजिए. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch. For £1 in British sterling, you can get up to 126 Indian rupees and 15 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Bhola jaye phoolon ka shabab, usme phir

0: Leica Gold.
1: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
3: ग्रुप जी में अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच मैच हुआ. फुल टाइम हो चुका है. अर्जेंटीना ने 3 goals बनाए एंड अल्जीरिया ने 0. ऑस्ट्रिया ने 3 goals बनाए जिसकी मैच हुई जॉर्डन के साथ में. फुल टाइम हो चुका है. उन्होंने बनाए 1 goal. ग्रुप के पोर्तुगल एंड कॉन्गो डीआर में मैच चल रहा है. 60 minutes हो चुके हैं. पोर्तुगल कॉन्गो डीआर दोनों ने 1-1 goal दागा है. एंड ग्रुप एल में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच मैच होगा आज 9 बजे. किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो? इंग्लैंड वाले हैं जी, किसको करेंगे? जल्दी जल्दी बताओ. And don't forget, you can get up to 15 minutes free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
4: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
5: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की? बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: फादर सन नो बॉन्ड जितलो स्पेशल छे इटली ज स्पेशल फिल्म आवी रही छे.
9: अंकल तमे पहला थी आवाज छो.
10: आवा एटले केवा?
8: धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स जिंदगी वंस मोर.
10: मारो बाप बनवानी कोशिश करे तू बुद्धि बेची आवे छे तू? अरे जिंदगी एवी मौज थी जीवजे के जिंदगी खुद तने आवी न पूछे.
8: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
10: सो थई जाए जिंदगी वंस मोर.
11: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
12: This is huge.
11: Tariq Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
12: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
11: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
12: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
11: Tariq Halal, Rainer's Lane. There is only one. What? Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
13: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala. Bala style.
0: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
14: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 7:36 इट्स 36 मिनट्स पास 7। आप सभी ने ट्यूनिंग किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। अंजी कंपटीशन टाइम, ध्यान से सुनिए। सो दिस इज अबाउट द फिल्म जिंदगी वंस मोर। अगर आप गुजराती जानते हैं, समझते हैं, आते हैं, गुजराती फिल्मों के शौकीन हैं तो ज़रूर इस कॉम्पिटिशन में भाग लीजिएगा, क्योंकि ये फिल्म दिखाई जाने वाली है कल शाम को, थर्सडे 18th of June शाम 6 बजे। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको मिलेंगे 2 टिकट फ्री। एंड जिंदगी वंस मोर स्टारिंग सिद्धार्थ रंदेरिया है और ये वीकेंड पे रिलीज होने वाली है, लेकिन कल इसका स्पेशल इनवाइट शो रखा हुआ है। सो फटाफट लिखिए वर्ड जिंदगी और मुझे भेज दीजिए आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर। जो विनर्स होंगे उनको हमारी टीम बिल्कुल कॉन्टैक्ट करेगी। एंड साथ में विनर्स विल नीड टू कलेक्ट द टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू ऑन द नाइट ऑफ स्क्रीनिंग। द टिकट्स कैन नॉट बी एक्सचेंज विद एनी अदर स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म। ओके, एंड ये जिंदगी वंस मोर दिखाई जाने वाली है कोर्ट हाउस होटल नियर लंदन्स ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
3: नमस्कार, रवि शर्मा ब्रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com.
5: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
10: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
11: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
0: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
8: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
0: Exclusive radio partner, Laika Radio.
1: celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
13: Every morning a shopkeeper opens his doors.
14: Lights on, shutters up, staff ready.
13: But today's customers don't start on the high street.
14: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
13: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
14: They walk into your competitors.
13: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
14: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंडन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। 8:15 17th of June वेंसे, हां जी मिड वीक पहुंचे आप और हम। जून का सेकेंड हफ्ता भी खत्म होने में आ रहा है। सेकेंड हफ्ता तो हो ही गया, दिस इज द थर्ड हफ्ता शुरू हो गया है। अभी बहुत जल्दी समय निकलता जा रहा है। तो द फिनिश लाइन थियरी के बारे में आपको बताऊंगी, फर्स्ट आवर में बात नहीं हो पाई। तो फिनिश लाइन थियरी क्या होती है? हम सभी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल्स, कोई टारगेट्स बना के बैठते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। टाइमलाइन भी दे देते हैं कि मुझे इतने समय में ये गोल्स चाहिए। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, उस मुकाम पर पहुँच जाते हैं, तब जाके आपको ख्याल आता है कि अरे ये तो मैंने पा लिया, अब वॉट नेक्स्ट। फिर उस नेक्स्ट के पीछे हम भागते हैं, फिर उस फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं, फिर आता है सवाल अब व्हाट नेक्स्ट। सो ये नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट ये चलते रहता है जब आप पहुंच जाते हैं फिनिश लाइन पे। एंड देन आपके ख्याल में आता है

0: कि मज़ा इस फिनिश लाइन, इस गोल को, टारगेट को अचीव करने में कम था, मज़ा उस प्रोसेस को एंजॉय करने में ज़्यादा था. I firmly believe in this and that's what I say in most of the podcast when I'm invited to speak about my journey. I always say, process ko enjoy karna seekh lo. End result bilkul lagta hai ki humne successful hona chahiye, failure nahi chahiye, hame bas matlab top pe rehna hai. Sab cheezein sahi hain aur ye sab aa bhi jayenge jab aap process enjoy karna start karoge. मेरा शो सक्सेसफुल रहे, सब मुझे बहुत चाहे, सब बोले वाश्विनी वाश्विनी, ये एंड गोल रहेगा भाई. जब एक एक घंटे में हम लोग जब गीत पे बातें करते हैं, आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन मैं करती हूँ, यहाँ पे जब मस्ती मज़ा इंटरेक्शन होता है आपके साथ में, दैट इज़ माई प्रोसेस एंड आई थरली एन्जॉय इट. बहुत इन्जॉय करती हूँ. तो जब मैं रील्स भी यहाँ पर रिकॉर्ड करती हूँ, जब मेरा जो पेज है रेडियो वाली अश्विनी, उस पे जब मैं पोस्ट करती हूँ, एंड पीपल व्हेन दे सी दैट ऑन माय व्हाट्सएप स्टेटस एंड व्हेन दे सी दैट दोज रील्स ऑन माय इंस्टाग्राम, दे से कि तू ना एक अलग ही जहाँ में घूमती है झूमती है, बिकॉज दैट्स द प्रोसेस. तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ, चाहे घर के काम हो, बाहर के काम हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, घर परिवार हो, रिश्ते हो, जो भी करिए ना, उस प्रोसेस को इंजॉय करिए. एंड रिजल्ट अच्छा आ ही जाएगा, और अच्छा नहीं भी आया तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ आपके लिए एक तो रिप्लेसमेंट लेके आया है, क्योंकि वो सीखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में. जी हाँ, यहाँ पे ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है मैंने, बट दैट वॉज द थियोरी कि फिनिश लाइन, वॉट आफ्टर दैट. चलिए इंजॉय करते हैं इस प्रोसेस को.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. With Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 126 Indian rupees and 15 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. Season C's apply.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: ye hai
5: Laika Gold.
6: Laika Gold.
7: Ashwini in for Anisa.
8: Women's Cricket Update, presented by Kamal Bumaka and brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
9: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Laika.
10: तो आपको सीधे ले चलते हैं कमल प्रभाकर जी के पास, जो हैं हमारे क्रिकेट करेस्पोंडेंट. कमल जी, over to you.
11: क्या चल रहा है वहाँ पे?
12: बस आज तो बहुत एक्साइटिंग गेम्स हुआ सुबह से लेके, बट बांग्लादेश 77 फॉर 8 टुडे इन ऑन 20 ओवर्स एंड द जायंट्स ऑस्ट्रेलिया 78 फॉर 1, सो इजी विन फॉर देम. And then thereafter, there was another big game. Obviously, India is very, very strong at the moment. Mm-hmm. And they got 209 for 5 in 20 overs. Netherlands are a new team here. They are playing pretty well. 114 in 17 overs. So it was easy win for India. But बहुत बड़ी game चल रही है, which I thought would be a massive game this evening, where Pakistan really crumpled and lost good 5 wickets in no runs. And 126 for 9, 20 overs mein khatam kiya woh log ne. But South Africa is a very strong side, 18 for 1, a lot to play for. 109 runs rehte hain, 17.5 overs hai. So it's going to be touch and go. Until and unless Pakistan really feels well and balls well, there could be a chance, but I think South Africa would make a win out of this.
10: Fantastic. कमल जी, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है सारे के सारे स्कोर्स जो आप सुना रहे हैं, एंड जरूर कनेक्ट करते हैं कल अगेन.
12: डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, हैव अ लवली वीक.
10: थैंक यू.
7: दिस अपडेट वाज ब्रॉट टू यू बाय TW Pays. विजिट twpays.com/laika फॉर अ चांस टू विन अ फ्री कार्ड टर्मिनल. T's and C's apply.
9: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LAIKA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
10: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 37 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से फ्राइडे तक रहता है आपका और मेरा साथ, शाम 7 से 10 बजे तक. ये सप्ताह शुरू भी कितना जल्दी हो गया ना. देखो वेंसडे भी हम लोग आ गए, बस 2 दिन और सैटरडे संडे के लिए सभी के कुछ ना कुछ प्लानिंग बनना शुरू हो गया होगा कि वीकेंड पे क्या करना चाहिए. एक तो धीरे धीरे मौसम हमारे यहाँ पे सुहाना होते चल रहा है ना, तो बड़ा मज़ा आता है कि हम लोग अपने फैमिली साथ में कुछ ना कुछ प्लानिंग बना के रखते हैं कि यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, सी बीच पे जाएंगे, खाना बना के जाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे, बाहर खा लेंगे, अरे बाहर क्यों खाना है, ऑल दिस काइंड ऑफ डिस्कशन. मज़ा आता है लेकिन जब भी ऐसे छुट्टियों का मौसम आता है, एंड स्पेशली GCSEs एग्जाम्स खत्म हुए, तो भाई घर में जो है बिल्कुल अभी टेलीविजन का और म्यूज़िक का आवाज़ बढ़ने वाला है. हमारे पे भी GCSE स्टूडेंट थी, सो आज से मतलब कल से हंगामा शुरू होने वाला है. ऑल द टाइम ऑल दोज लेजी मॉर्निंग्स, फिर बीइंग अ मम, उठो चलो अपने काम पे लगो, ये सारी चीज़ें. ऑल द बेस्ट मॉम्स इंक्लूडिंग मी. बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने बच्चों को देखते हैं कहाँ से उन्होंने जर्नी शुरू की और कहाँ अभी पहुँचे और धीरे धीरे अपनी अगले पड़ाव पे वो जाने वाले हैं. तो पड़ाव पे से ज़रा आपको सुनाते हैं ये किस्सा. ह्यूस्टन की ये एक न्यूज़ है. व्हेन अ ह्यूस्टन एयरपोर्ट केप्ट रिसीविंग कंप्लेंट्स अबाउट 7 मिनट वेट टाइम फॉर लगेज, दे मूव द गेट टू मेक पैसेंजर्स वॉक 6 times लॉन्गर टू गेट देयर बैग्स. एज अ रिजल्ट कंप्लेंट्स डिक्रीज्ड टू 0. क्योंकि लोगों ने सोचा इतना देर कौन वेट करे, अब 6 मिनट का वेट, अब 6 मिनट के वेट के बदले उन्हें 7 मिनट्स का वेट था, उसके लिए कितना टाइम ज़्यादा अब चलना पड़ता है. तो एयरपोर्ट पे जिस तरीके से लंबा डिस्टेंस आपको और हमको चलना पड़ता है फॉर बैग्स के लिए, वो इसलिए कि आप और हम कंप्लेन ना करें. कंप्लेन करोगे ऐसा करना पड़ेगा, इतना लंबा लंबा चल के जाना पड़ेगा।
0: This is like a gold. Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
10: एपिसोड नंबर 21 आ चुका है हमारे लायका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का, एंड साउथ एशियन वुमेन्स इन स्पोर्ट्स, दैट्स द टॉपिक। दीप राजा इसे होस्ट कर रहे हैं। ब्रेकिंग बैरियर्स इन अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है। लायका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लायका एक्स्ट्रा इज हियर। दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर on the evening show.
13: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। call travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
14: travelhub, best service with unbeatable price
13: at all protected.
14: visit travelhubworld.com.
15: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
16: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
17: हैरो, कम टुगेदर फॉर अ मीनिंगफुल कॉज। श्री कच्छ सत्संग स्वामीनारायण टेम्पल कैंटन हैरो एंड सेंट ल्यूक्स हॉस्पिस हैरो प्राउडली प्रेजेंट द एनुअल स्टारलाइट वॉक सैटरडे 27 जून फ्रॉम बायरन हॉल स्टार्टिंग एट 7:30 PM. के नीचे साथ वॉक करिए और लोकल कम्युनिटी में एंड ऑफ लाइफ केयर के लिए सपोर्ट दीजिए। रजिस्टर टुडे एंड रिसीव अ स्पेशल डिस्काउंट यूजिंग कोड LIKA10. डिटेल्स के लिए विजिट करें skssd.org और फॉलो सेंट ल्यूक्स हॉस्पिस ऑन सोशल मीडिया। रेडियो पार्टनर्स लायका रेडियो।
18: फादर सन नो बॉन्ड जितलो स्पेशल छे इटली ज स्पेशल फिल्म आवी रही छे।
19: अंकल तमे पहला थी आवाज छो।
20: आवाज એટલે કેવા?
18: धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स जिंदगी वंस मोर।
20: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તું બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજ થી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવી ન પૂછે।
18: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધી ઇમોશન્સ લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાસ ઓન 19 જૂન। ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ।
20: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર।
21: હાય, હેલો, કેમ છો? હું છું કેતી દવે અને આ શું થઈ ગયું? અરે અરે, પબ્લિક ડિમાન્ડ ફરીથી આવી રહી છે લંડન મારું નવું નાટક લઈને, પત્ની પ્રીમિયર લીગ એટલે કે PPL, યસ, ફ્રોમ 3rd જુલાઈ ટિલ 12th ઓફ જુલાઈ। વાઓ, એન્ડ ધીસ ઇઝ બીંગ પ્રેઝન્ટેડ બાય પંકજ સોડા ગેલેક્સી શોઝ। યાદ રાખજો,
18: પત્ની પ્રીમિયર લીગ શોઝ એટ ટ્રાઇસ્લીપ, અલ્બર્ટન, ઈસ્ટ એન્ડ સાઉથ લંડન, લોર હોમ, લેસ્ટર। ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન કોલ દીપા ઓન 0794756 1947।
22: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે।
18: BAPS મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર।
22: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
18: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
22: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ।
18: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે।
22: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ।
18: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન।
0: લાઇકા રેડિયો નેટવર્ક, પ્રાઉડ હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર, રાગસાન। Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknight.

0: What a lovely track. लता मंगेशकर की आवाज में इम्तिहान which was released in 1974 उस फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत. कितने सारे मैसेजेस आए भाई इस गीत पे. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक एज वेल. ऑब्वियसली जो मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट लेके आती हूँ वो सभी मेरे फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं और मैं इस तरीके से डिज़ाइन करती हूँ गीतों को कि आप इन्जॉय कर पाएँ. बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ते रहता है, जैसे कि अब इट्स 47 मिनट्स पास्ट 8, तो हम अपना एक मूड भी हमारा ना शिफ्ट होते रहता है उसके साथ में. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू मूड शिफ्टिंग के बारे में फटाफट बता दें आपको, किशोर कुमार फैंस गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर स्पेशल म्यूजिकल नाइट फॉर म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय इंद्रायणी संजय विद हीनल एंड 515 बैंड. इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19 जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल एसेक्स. टिकट्स अवेलेबल एट eventbrite.co.uk या आप कॉल कर सकते हैं 0208-514-5400. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड रेडियो.
1: ये है लाइका गोल्ड. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 126.04 Indian rupee, 369.42 Pakistani rupee, 442.31 Sri Lankan rupee, 162.99 Bangladeshi taka, 83.83 Afghan Afghani, 171.85 Kenyan shilling, 1.32 US dollars.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.66 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: भाई एक स्टडी की गई है आर्ग्यूमेंट्स पे, मतलब जो बहस होती है हम लोगों की कहाँ सुनी होती है ना. तो स्टडी शोज दैट आर्ग्यूमेंट्स कंडक्टेड ओवर टेक्स्ट मैसेजेस आर 3 times लॉन्गर एंड 4 times मेसियर देन डिसएग्रीमेंट्स हैंडल्ड इन पर्सन. द एब्सेंस ऑफ द टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड इमीडिएट फीडबैक ऑफन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इमोशनल एस्केलेशन. यस यस, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस, ऑल्सो माई कलीग्स, कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो किसी से, बहुत बहुत क्रूशल बात हो, तो कृपया करके नंबर घुमाइए उस इंसान को. पहले मैसेज करके रखिए, बताइए कि भाई मुझे आपसे बात करनी है आवाज़ में, वीडियो पे, जैसा भी है. क्योंकि जब हम टेक्स्ट किसी को भेजते हैं, सामने वाला इंसान किस मूड में है, क्या अदाएं चल रही हैं उसकी हमें पता नहीं होता है ना. सो अपने मूड के हिसाब से, जैसे मैंने अगर आपसे पूछा कि कैसे हैं आप, तो ऐसे लिख के भेजिए. आप अच्छे मूड में होंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा अश्विनी हमेशा की तरह हाल चाल पूछ रही है. एंड इफ यू आर नॉट इन गुड मूड, लाइक हु इज शी टू आस्क मी कि कैसे हैं आप, है ना. सो यस, कभी किसी से बात करनी है तो फुनुआ घुमाइए. लास्ट ट्रैक ऑफ द आवर.
1: Feel good classics all day. Leica Gold. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Leica Gold.
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me.
4: Southall Travel, at all protected.
5: Attention meat lovers of Rainers Lane.
6: This is huge.
5: Tariq Halal is opening in Rainers Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
6: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
5: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
6: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainers Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
5: Tariq Halal, Rainers Lane. There is only everyone.
6: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
9: Lattuke halo ne nandala.
8: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
10: Gadbar ગોટાળા છે, પ્રોબ્લેમ્સ મોટા છે, પણ બધું ઓલરાઇટ છે.
11: મેં છે ને બેક ટુ બેક ત્રણ મૂવીઝ જોઈ લીધી.
10: ગેટ રેડી ફોર અ ફૂલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વિરજ ગેલાણી એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ ઇન ધ મૂવી. બધું ઓલરાઇટ છે.
11: બે ત્રણ કલાકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધું ઓલરાઇટ થઈ જશે.
10: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન. ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ.
12: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
14: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2020. 26 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
15: 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
16: The Evening Show with Ashwini. Leica
15: Gold. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile.

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे तक रहता है आपका मेरा साथ, शाम 7 से 10 बजे तक मिड वीक। यस जी यस, दिस इज माई फेवरेट डे। दो दिन इधर एंड दो दिन उधर, तो फील गुड वेंसडे में आप सबको हमने सुनाया एक बहुत ही बेहतरीन मेलोडियस गीत। अब इस आवर में गज़ल सुनाऊंगी या कव्वाली, बिल्कुल लिख के भेजिए आपको क्या लगता है। जी हाँ, कंपटीशन ज़िंदगी का हो चुका है। निर्मला जी इस आप बिना, उन्हें जो है हमारी टीम ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी। एंड 9:14 हो रहे हैं, नियरली कुछ सेकंड्स ही बाकी हैं, रुकिए तब तक बातें करें या बता दें आपको कि हो गया है, 9:14 हो रहे हैं। तो वीकेंड पे क्या प्लान है भाई आप लोगों के? यहाँ पे कुछ स्पेशल बन रहा है, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, है ना? सी बीचेस जो हैं हमारे यहाँ की बिल्कुल लबालब भर जाती है जैसे जैसे समर्स आते हैं, जैसे जैसे वेकेशन टाइम होता है, तो सारे के सारे लोग जो हैं प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझ में कहीं जाने वाली हूँ क्या, ये मुझे अभी तक नहीं पता क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं बनाई है। हाँ, लेकिन वीकेंड पे ज़रूर होता है कि कहाँ जाना है या नहीं जाना है, या घर पे साफ़ सफाई आंदोलन है। क्या आपके यहाँ पे ऐसा होता है कि एक लिस्ट लगती है कि भाई सैटरडे ये काम करने हैं एंड संडे कहीं घूमने जाना, या दोनों ही दिन सब जो है टीवी के सामने बिंज वॉचिंग करते हैं? एज आई सेड, येस माई सीरीज इज स्टिल गोइंग ऑन। टाइटन वाली जो वेब सीरीज़ है मैं अभी देख रही हूँ। और कोई अच्छी फिल्म आपने देखी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे ऐसे भी व्हाट्सएप पे आपके मैसेज आते रहे तो ज़रूर बताइएगा। माधुरी दीक्षित की मैंने फिल्म देखी और मैंने एपिसोड की तरह देखी, मैं वन को मैं वो फिल्म नहीं देख पाई। आपका क्या रिव्यू रहा उस फिल्म के बारे में मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 126 Indian rupees and 15 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.

0: रजिया सुल्ताना से आपको सुनाया ये गीत मोहम्मद रफ़ी एंड आशा भोसले की आवाज़ में। 1961 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। एक्चुअली मुझे याद नहीं मैंने ये गीत पिछली बार कब सुना था, लेकिन आज जब मैंने प्लेलिस्ट में ये गीत आप सबके लिए लगाया एंड आई वॉज एक्साइटेड तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक खुशी होती ना जो हमें फील होती है, है ना, एक एहसास होता है हमारे दिल में, बहुत अच्छा लगता है। और ये गीत जो है ना, ये बहुत ठहराव वाला गीत है और कितना ब्यूटीफुली इसमें उन्होंने, आई डोंट रिमेम्बर कि इसको कैसे फिल्माया गया है, बिकॉज याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सुंदर हो सकता है। शायद जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं एक बेंच पे बैठे हैं, हाथ पकड़ के बैठे हैं, या चांद की तरफ देख के ये गीत गा रहे हैं, टिमटिम सितारे की तरफ देख के गीत गा रहे हैं, बहुत सुकून वाला लगता है मुझे ये गीत। तो जितनी वैरायटी हम लाने की पूरी कोशिश करते हैं ना आप लोगों के लिए, जैसे जैसे मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि जैसे जैसे आवर्स चेंज होते रहते हैं, 9:20 हो रहे हैं अब, धीरे धीरे हम सबकी बैटरीज जो हैं डाउन हो रही, क्योंकि दिन ख़त्म हो रहा है। तो भाई मेरी बैटरी तो भी डाउन नहीं हो सकती अभी, और मैं यहाँ पे हूँ 10 तक आप सबका साथ देने के लिए। एंड आप लोगों के मैसेजेस जो आ रहे हैं कि ये गीत, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अश्विनी एक्चुअली ये गीत हमने भी बहुत टाइम बाद सुना। सो एक तो गिव मी अ हाई फाई कि हम लोगों की चॉइसेस जो है काफ़ी एक जैसी है। और वीकेंड पे आप लोग क्या करने वाले हो ये मैं आप लोगों से पूछ रही थी। तो अगर आप फ्री हो, है ना, एंड सोच रहे हैं कि भाई कहाँ जाए क्या करें, तो इट्स ऑल अबाउट द पैटीज, जो बर्गर फेस्ट होने वाला है एट रिचमंड एथलेटिक्स ग्राउंड इस वीकेंड पे, जहाँ पे बर्गर फेस्ट ला रहे हैं टॉप 20 ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द UK टू बैटल इट आउट टू द क्राउंड। जो विनर होने वाला है उनको ऑब्वियसली क्राउन वन दिया जाएगा। अरे यार, क्राउन मतलब क्राउन नहीं बनाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली तो जो बेस्ट पैटीज बनाएगा वो विनर होंगे। एंड फुल साइज बर्गर्स मिलने वाले हैं, मिनी स्लाइडर्स होंगे, एंड ईटिंग कॉम्पिटिशन भी होने वाली है। सो इट्स फ्रॉम 12-14 June तक ये वाली चीज़ थी, लेकिन और भी दूसरी वाली चीज़ें, ये मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा, ये तो हो चुकी है चीज़, आप लोगों में से कई लोग इसमें गए हैं। क्यों मैं पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे भेजा था ये वाला चीज़ कि भाई हम यहाँ पे गए थे बर्गर फेस्टिवल के लिए, अगले साल ना थोड़ा जल्दी बताना, हम भी जाके खाएंगे वहाँ पे। 11-19 June जो है 2026 वर्ल्ड कप को लेके भी बहुत सारी जगह पे लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के बैठते हैं, है ना, एंड बियर की ग्लासेस होती है हाथ में, कुछ ठंडे ठंडे पेय लेके बैठते हैं, और फैमिलीज के साथ में जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगती है ना हमारे यहाँ पे समर्स में, जहाँ पे फिल्में दिखाई जाती है, उसका भी लुत्फ ज़रूर उठाइएगा।
1: Like a radio. Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Group J में अर्जेंटीना अल्जीरिया की मैच हो चुकी है, जिसमें जीता है अर्जेंटीना। ऑस्ट्रिया एंड जॉर्डन के बीच मैच हुआ, जिसे जीता ऑस्ट्रिया ने। ग्रुप K में पोर्तुगल और कॉन्गो DR दोनों ने एक एक गोल दागा, फिनिश टाइम हो चुका है। ग्रुप L में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच मैच हो चुका है शुरू, 23 हो चुके हैं एंड इंग्लैंड ने दागा है ए गोल। ये इंग्लैंड गो, डोंट फॉरगेट यू गेट योर 15 का फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स, कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Del, Del's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan? Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is, if you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like a
3: gold. Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
3: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
4: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 a week.
3: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
4: Two businesses.
5: Same town.
4: Same service.
5: One appears on page one of Google.
4: The other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
6: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style. Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
7: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
8: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Dazzle. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like a goat. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
3: ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: गड़बड़ घोटाला छे, problems मोटा छे, पर बदु alright छे.
9: मैं चले back to back 3 movies जोई ली थी.
8: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie बदु alright छे.
9: बेहतर कलाकार पाचो आवे जैसे न पच्ची बदु alright थे जैसे.
8: In cinemas on 12th of June. For more info, visit Bakrania Media's Instagram handle.
10: ये वो लगे छे. Picture church.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
12: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
13: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
14: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS at Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
15: For £1, you'll get 125.99 Indian rupee, 370.02 Pakistani rupee, 443.07 Sri Lankan rupee, 163.26 Bangladeshi taka, 84.06 Afghan Afghani, 172.16 Kenyan shilling, 1.32 US dollars.
16: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The LIKA Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
15: Gold is currently trading at £104.66 per gram.
16: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
15: टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है कि मिला लेते हैं एक बार घड़ियाँ, कितना हुआ है समय. इट्स 42 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. लास्ट दो गीत इस आवर के, पहला होगा मौसम फिल्म से भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में दिल ढूंढता है, एंड लास्ट ट्रैक ऑफ द आवर विल बी अनुराधा पौडवाल एंड उदित नारायण की आवाज़ में लाल दुपट्टा मलबल का. क्या करते थे साजना. ओ माय गॉड, आई हैड कैसेट्स ऑफ दीस फिल्म्स. नहीं मतलब ये लाल दुपट्टा मलमल का, सिर्फ इसका भूपेंद्र जी की कैसेट्स नहीं थी. ओके, कल सुबह काजल आएगी 6 बजे, तो ज़रूर उनका स्वागत कीजिएगा, उनका साथ दीजिएगा. एंड हमेशा की तरह प्यार जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो प्यार दो प्यार लो. पावर का यूज़ तो किसी की लाइफ बर्बाद करने के लिए लोग करते हैं, और आप में से कोई भी उसका यूज़ आई एम श्योर नहीं करता होगा. क्या बात है, आई एम गेटिंग लाइव स्कोर्स. इंग्लैंड ने 2 गोल बना लिए, फैंटास्टिक. ऑन दैट नोट, अभी आई हैव टू रश होम एंड वॉच द मैच. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. कल थ्रिलिंग थर्सडे पे मिलेंगे आप और हम. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.
17: ये है लाइक अ गोल्ड 10:35 AM.
18: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Father son no bond jitlo special che, itli j special film avi rahi che.
5: Uncle, tame pehla thi awaaz chho.
6: Awaaz itle keva.
4: Dharma Productions.